0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।
1: कह

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: शनिवार 9 मई 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5:02।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। 5:07 हो रखे हैं और समय हो चुका है चिलैक्स का, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर। सैटरडे का दिन है, वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी सी देर और नींद लेने का मन करता है, लेकिन जो लोग जा गए हैं उनके लिए ये सुबह एक नई कहानी लेकर आई है। आज का दिन हम मैनिफेस्ट करते हैं कि एक खूबसूरत दिन होने वाला है, हल्का सा सुकून, अच्छे लोग, अच्छी वाइब्स और दिल को छू लेने वाली गाने जो हम हमेशा लेकर ही आते हैं आप सभी के नाम। इस सुकून भरी सुबह की शुरुआत ऐसे हमने की हेमलता जी और शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में, कई दिन से मुझे के साथ। आज के इस पहले आवर में आपको पता है हम सिर्फ सदा बाहर गाने ही चलाते हैं, वो गाने जो समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और भी गहरे हो जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस म्यूजिकल सफर में, जहां पर सिर्फ प्यार ही प्यार न्योछावर हम करेंगे इन गानों के जरिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया, और आपकी सैटरडे मॉर्निंग का ये सॉफ्ट सा साउंड ट्रैक लेकर आई हूँ। तो चिलैक्स करिए, रिलैक्स एंड चिल करिए, दिल को हल्का आप रखिए और इस सुबह को आप महसूस करते रहिए। नोटिफिकेट आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: क्या कहा?

0: Tracks with Radio Musty.
1: I'm sure कि आपने शायद कभी नोटिस किया है कि सुबह का समय सबसे ईमानदार होता है, न कल की टेंशन न आज की भागदौड़ शुरू हुई होती है, सिर्फ एक खामोशी और दिल की असली आवाज। सदाबहार गाने भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, सिंपल सीधे और बिना शो ऑफ के, लेकिन दिल पर सीधा असर करते हैं। इस सैटरडे मॉर्निंग पर थोड़ा नॉस्टैल्जिया अलाउ कीजिए अपने लाइफ में और चिलैक्स पर गाने नहीं यादें चल रही है अभी। हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गाने जो आप सुनकर आई एम श्योर कि बहुत ही खुश हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जो यादें हैं ताज़ा हो जाएंगी। और यही तो हमारा इरादा है आपको डाउन द मेमोरी लेन ले जाने का। सो यस, आई होप यू एंजॉयिंग द ट्रैक्स। और शायद कई लोग अभी निकल चुके हैं, जी हाँ, काम पर जाने के लिए। सैटरडे संडेज के दिन काम पर जाते हैं, आपको हम वो गुहाश कहते हैं। और जो लोग सब्जी मंडी में है ऑलरेडी, जी हाँ, शनिवार के दिन कई जगहों पर सब्जी मंडी लगी होती है, सो आपको भी वो गुहाश। एंड आजकल आई एम श्योर कि आपने शायद देखा होगा, नोटिस किया होगा, महसूस किया होगा कि

0: समय होता है। यहीं पर लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं क्योंकि इस ठंड के मौसम में आप जब बाहर निकलते हो तो ये सीधा हमारे दिमाग पर ही असर करता है। सो यस, आप गर्म कपड़े पहनिए, एक गर्म टोपी पहन सकते हैं एंड बाद में आप उसे निकाल भी सकते हो जब आपको लगे कि ठंड अब थोड़ा सा थम चुका है। सो यस, अभी आप निकल रहे हो तो टेक योर नेसेसरी प्रिकॉशंस, और हमारे तो गाने हैं ही ना आपको गर्म गर्म रखने के लिए। सो यस, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल ट्रैक और आपकी डेडिकेशंस मैसेजेस के साथ हम थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: पता है वीकेंड का मतलब सिर्फ आउटिंग नहीं होता, कभी कभी

0: वीकेंड का मतलब होता है टू स्लो डाउन, चाय का कप थोड़ा धीरे पीना, खिड़की से बाहर देखना और एक गाना जो सीधा दिल तक पहुंच जाए। 70s और 80s के गाने इसीलिए तो टाइमलेस होते हैं क्योंकि उनमें जज्बात जल्दी नहीं करते। आज का रिलैक्स भी वही कह रहा है, जल्दी किस बात की है, सुबह है और जिंदगी अभी पूरी बाकी है। सो इसी के साथ चलते आपके मैसेजेस की ओर, देख रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस वी हैव ऑन व्हाट्सएप। सो जयशन जी, गुड मॉर्निंग आपको, शुभ शनिवार आपको भी, आई होप यू हैव अ गुड गुड डे। और नेक्स्ट गाना जाता है फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति और आग परिवार जो मौदाल में रहते हैं, इन सभी के नाम। पॉम्बू से हमारे साथ कनेक्टेड है धनेश्वर जी और आपकी प्यारी पत्नी है सुनीता, साथ ही देव, रेखा, संजीव, निशा एंड दावी दोस्त परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है। एंड यस, यहाँ पर राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, अर्षी, अम्बल के नाम हम डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना। वैसे आप शम्मी कपूर जी के बहुत बड़े फैन हैं और शम्मी जब कपूर जी के एक का एक गाना हमने चला दिया है और टाइम मिले तो हम ज़रूर रिकॉर्ड चलाएंगे, क्यों नहीं। एंड यहाँ पर ब्रिंदा हम पंगा हो हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप है रुसबेल से और आज है आपका जन्मदिन, लेकिन आप मर्शस में नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपका जन्मदिन ज़रूर मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रिंदा जी और बहुत बहुत सारा प्यार, गुड विशेज ऑन योर बर्थडे। ये जन्मदिन आपके लिए बहुत ही खास रहे, बहुत ही शुभ जाए एंड आप इसे अपनों के साथ बताएं या फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी, खुद के साथ भी आप बताइए, लेकिन ये बर्थडे अच्छा जाएगा, बस आप ये मैनिफेस्ट कीजिए। सो जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपको ब्रिंदा जी, एंड हमारी ओर से यानी रेडियो मस्ती टीम की ओर से आपको बहुत बहुत सारा प्यार।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए घर में रहते चलिए पौने छह बज रहे हैं, आपको हम अभी बताएंगे कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। गुस्सा या जल्दबाजी से बचना जरूरी है और किसी अपने की सलाह फायदेमंद होगी। आज अपनी मेहनत पर आप भरोसा रखें। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: वृषभ राशि आज सुकून और स्टेबिलिटी महसूस होगी आपको एंड परिवार के साथ समय बिताने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा और आर्थिक फैसले समझदारी से लेने का दिन है। पुरानी चिंता धीरे धीरे ये सुलझ जाएगी और दिन हल्का रखें और खुद को आराम दीजिए। छोटी खुशियां बड़ा सुकून देने वाली है। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज बातचीत आपकी ताकत बनेगी। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी पुरानी दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है। नए विचार मन को प्रेरित करेंगे। सफर या छोटी आउटिंग का योग है और दिन मुस्कुराहट के साथ बीतेगा। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। हर बात दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम और पॉजिटिव सोच आपको बैलेंस देगी। घर का माहौल खुशी देगा। किसी अपने का साथ हिम्मत बढ़ाएगा। शाम तक मन शांत हो ही रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आत्मविश्वास अपने शिखर पर रहेगा। काम में पहचान मिल सकती है। नई जिम्मेदारी लेने का मौका आपको मिलेगा। लोग आपकी लीडरशिप को सराहेंगे और बस आपको विनम्रता बनाए रखना चाहिए। दिन सफलता और गर्व का एहसास देगा। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज प्लानिंग और डिसिप्लिन का फायदा आपको मिलेगा। जो काम सोच समझ कर करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। सेहत

0: पर ध्यान देना जरूरी है। छोटी परेशानी जल्दी दूर होगी। काम और आराम का संतुलन बनाए रखे, दिन प्रोडक्टिव रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। किसी अपने से दिल की बात करने का सही समय है। क्रिएटिव सोच उभर कर आएगी और दिन हल्का और खुश महसूस करेगा। आज अप्रिसिएशन देने और लेने दोनों का दिन है। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: इंट्यूशन मजबूत रहेगी। आज दिल को जो भी पसंद हो वो आज आप कर ही दीजिए। काम में धैर्य रखेंगे तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा और पुरानी उलझन का हल भी आपको मिल सकता है। अकेले में थोड़ा समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। शांति और समझ दोनों साथ रहेंगे। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज उत्साह और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बाहर निकलने या किसी से मिलने का प्लान बन सकता है। नई जगह या नया अनुभव खुशी आपको देगा। मन हल्का और एनर्जेटिक रहेगा। अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटेगा जरूर। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी लेकिन मेहनत रंग लाएगी। काम में प्रोग्रेस आपको दिखेगी। बड़े फैसले शांति से लीजिए। किसी सीनियर या बुजुर्ग की सलाह काम आएगी। धैर्य और लगन सफलता की चाबी बनेगी। लकी नंबर है आज आपका 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए विचार और क्रिएटिविटी उभर कर आएगी। कुछ अलग करने का मन करेगा। दोस्त या साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा। पुराना काम आगे बढ़ने लगेगा और पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो रास्ते खुलेंगे। दिन इंस्पिरेशन से भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज दिल रोमांटिक और शांत रहेगा। संगीत, प्रार्थना या आराम से मन को सुकून मिलेगा। अपनों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा आपको और छोटी खुशी भी दिल को गहरा संतोष देगी। आज अपने जज्बात को समझने का दिन है। लकी नंबर है आज आपका 5। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। वैसे हमारी जो खुशी होती है हमारे हाथों में ही होती है। एंड याद रखिए कि सितारे रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद होता है। सो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका दिन कैसे कटेगा। चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती, RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
3: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
4: डन
3: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
4: ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a musti.
4: चलिए इसी गाने के साथ हम विश करते हैं बेटे अविश को अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम अमालीना, अविश, अविनाश, आदु, कृष, करंजीना एंड दौलत परिवार जो है प्लेंदी पापा, इसी सो हैप्पी बर्थडे आपको और बहुत सारा प्यार हमारी ओर से भी।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। सरकार ने गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करने पर कड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने सड़क नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी चालक जो फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़े पाया जाएगा उसे पहले की तरह 3 से 6 पॉइंट्स नहीं बल्कि 5 से 10 पॉइंट्स की सजा मिलेगी। ये फैसला उस समय आया है जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग ने नए पॉइंट सिस्टम के लागू होने के बाद पहली रिपोर्ट जारी की है। और अंतर मंत्रालय समिति ने फैसला किया है कि ईद उल अदा 2026 के लिए बीफ का दाम 186 रुपये प्रति किलो तय हुआ है। आयातकों की 220 रुपये की मांग के बावजूद मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि ये रेट आम जनता के फायदे के लिए रखा गया है और ये रेट त्यौहार के 10 दिन बाद तक चलेगा। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी ने कल दोपहर पर्यावरण मंत्रालय को बताया कि एंजन लिमिटेड की एक पाइपलाइन से भारी तेल लीक हो रहा है। ये लापे नाले के पास है और एमपीए ने बचाव शुरू कर दिया है। लातानी नदी के मुहाने पर

0: लगभग 100 मीटर लंबी तैरती बार लगाई गई है। इंजन लिमिटेड ने तेल को रोकने और सोखने यानी अब्सॉर्ब करने के लिए विशेष सामग्री लगाई है। और विदेश में चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को सीधे तकनीकी सहयोग दिया था। ये खुलासा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। और अंत में मौसम का हाल, मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो कल रविवार 10 मई को सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। और वैसे दक्षिण पूर्व दक्षिण की ओर पाई जा रही सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल पार्टों पर। बाद में मौसम में सुधार आएगा और रात्रि के समय आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल पार्टों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 4 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी, इसलिए मछेरों को, प्लेजर बोट वालों को और जनता को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 6:38 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 5:44 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti।
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। 6:12 और चिलैक्स का दूसरा आवर शुरू हो चुका है रेडियो मस्ती पर। सैटरडे की सुबह धीरे धीरे रोशनी से भर रहा है और इस खूबसूरत आवर की शुरुआत हुई दिल ही दिल में फिल्म के गाने डोला डोला के साथ है। ये वो समय होता है जब सुबह पूरी तरह जाग चुकी होती है, लेकिन अभी हम बाहर जाग रहे थे, रोशनी तो पूरी तरह से फैली नहीं है, बट फैल जाएगी। आपको बताएं, ये तो प्रकृति का नियम ही है। तो अभी इस रोशनी की तरह धीरे

0: धीरे इस दिन की शुरुआत कीजिए और मन को आप, दिल को आप हल्का सा रखिए, ना ज्यादा शोर ना जल्दी, सिर्फ सॉफ्ट मेलोडीज और दिल को हल्का कर देने वाली फीलिंग्स। आज इस आवर में हम लेकर आए हैं बहुत ही सॉफ्ट सूदिंग गाने, आपके नाम रोमांटिक ट्रैक्स, जो मॉर्निंग को और भी पीसफुल बना दे। मैं हूँ आपके साथ, आपके रिया, और आप सुन रहे हैं चिलैक्स रेडियो मस्ती पर, जहाँ पर आप सचमुच चिलैक्स ही कर पाएंगे। सो एज़ वी गेट टू द नेक्स्ट ट्रैक नाउ, और आपके डेडिकेशन मैसेजेस आप जरूर भेज सकते हैं 5499-1294। विशिंग यू अ लवली सैटरडे, आपका शनिवार बहुत बहुत अच्छा जाए, बहुत ही शुभ रहे, बस हमारी यही प्रार्थना है।
1: Chillax, Chillax, Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: चलिए जी, यहाँ पर इसी एक दो मैसेजेस ये हम देख लेते हैं. हमारे साथ इमलता बच्चन जी जुड़ी हुई हैं. आप हैं पॉइंट टू पी मौसी और नेक्स्ट गाना आप डेडिकेट करती हैं सभी के नाम, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल सैटरडे. आपको भी हम विश करते हैं जो हैव अ ग्रेट सैटरडे और बहुत सारा प्यार रियो मस्ती की ओर से आपके नाम, आपके पूरे परिवार के नाम. रति है हमारे साथ जुड़ी हुई और आज अपनी मम्मा अलका ओमुगम जी का बर्थडे मना रही है. मम्मा पिछले हफ्ते से है. सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अलका जी. बहुत सारा प्यार, गुड विशेस और ब्लेसिंग्स आपके नाम. बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम रति, राजीव, स्वीटी, आयु, श्रिया, रवीश एंड लिटिल वन मानविक एज वेल और फ्रॉम ऑल गोविंद परिवार. चलिए एक बर्थडे मैसेज यहाँ पर. हैप्पी बर्थडे आपको अलका जी एंड हमारी ओर से भी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड एक और बर्थडे यहाँ पर, हैप्पी बर्थडे टू नीस प्यारी सी भांजी अवनी को जो आज 7 साल की हो गई है. बहुत सारा प्यार एंड लव, गुड विशेस कमिंग फ्रॉम पुपू रीना, पापा ऋषि, मामा पूजा, भाई अवनीश, आरव, बहन सानवी एंड द होल बी सिस परिवार जो है कैरोलिन बिलेरिविया सेशसे और सुहावन मुसलमान सुहावन से है. सो ऑलराइट, हम आपको विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे छोटी सी अवनी को एंड बहुत बहुत सारा प्यार आपके नाम. आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छे से जाए एंड अपनों के साथ ये आप बताएं. आज बेटी स्वीटा और दामाद रोशन हुकुम की वेडिंग एनिवर्सरी है. सो हैप्पी मैरिड लाइफ एंड गुड विशेज फ्रॉम मामा सूया, पापा लाल देव एंड हमारी ओर से भी, रेडियो मस्ती की ओर से भी आपको गुड विशेज. ललिता जीतन जी कैसी हैं आप, अभी जॉगिंग के लिए जा रही है. सो नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेटेड टू सरोज कुमारी, वीना, गीता, ज्ञानती और संजय विजय, द होल जीतन परिवार जो लाभ ऐसे है हमेशा साथ देते हैं. ऑल्सो नेक्स्ट गाना प्यारी पत्नी हेमा के नाम जो है कैथोबोन से जितने भी लोग साथ निभा रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत सारा प्यार आप सभी के नाम. एंड एक और मैसेज यहाँ पर, सो हाय पॉमी सौदस एंड सुनक सिंह, सिबालक और उगादन परिवार के नाम नेक्स्ट गाना. सो विशिंग यू ऑल हैप्पी सैटरडे और हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए. वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स टू मेक योर सैटरडे और भी खूबसूरत.

0: सुबह के 6:30 बज चुके हैं। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। फोन पर सख्ती, गाड़ी चलाते समय फोन या माइक्रोफोन पकड़ने पर अब 5 से 10 पॉइंट्स की सजा। यूएई दूतावास मॉरिशस में अहमद नासिर अल दहमानी होंगे पहले निवासी राजदूत। एमपीए तेल लीक, एंजन लिमिटेड की पाइपलाइन से तेल लातानी नदी में रोकने के उपाय किए गए। विदेश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पहुंचाई थी मदद, चीन का बड़ा कबूलनामा। अरब समाचार विस्तार से। सरकार ने गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करने पर कड़ा कदम उठाया है। मंत्री परिषद ने सड़क नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी चालक जो फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़े पाया जाएगा उसे पहले की तरह 3 से 6 पॉइंट्स नहीं बल्कि 5 से 10 पॉइंट्स की सजा मिलेगी। ये फैसला उस समय आया है जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग ने नए पॉइंट सिस्टम के लागू होने के बाद पहली रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में अच्छे संकेत दिख रहे हैं। सड़क सुरक्षा बेहतर हो रही है और कुछ जगहों पर हादसों में कम लोग घायल हो रहे हैं। अधिकारियों ने देखा कि लोग अब थोड़ा बेहतर व्यवहार करने लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग खतरे वाले काम कर रहे हैं। SMS भेजना और फोन हाथ में पकड़ना अब भी बड़े हादसों का कारण है, इसलिए ये नए नियम लागू किए गए हैं ताकि लोग जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: मंत्रिमंडल की तरफ से इस बात पर मंजूरी दी गई है कि परिवहन मंत्रालय की ओर से अटॉर्नी जनरल दफ्तर को ऐसे निर्देश दिए जाएं ताकि 3rd Schedule टू द रोड ट्रैफिक एक्ट में सुधार लाए जाएं नियमों के अंतर्गत, ताकि पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के अंतर्गत पॉइंट्स के रेंज में वृद्धि लाई जा सके इस अपराध के लिए कि हाथ में माइक्रोफोन या टेलीफोन हैंडसेट का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो इस प्रकार से हो 3 से 6 पॉइंट से बढ़ाकर इसे 5 से 10 पॉइंट तक किया जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट ने जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 की अवधि के लिए कंपैरेटिव आंकड़ों के आधार पर पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम का एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 31 जनवरी 2026 को पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के शुरू किए जाने के बाद से सड़क सुरक्षा सूचकांक में स्थिरता आई है। कुछ मामलों में जानलेवा दुर्घटनाओं से बचा जा सका है। सड़क इस्तेमाल करने वालों के व्यवहारों में भी सुधार आने लगा है। फिर भी कुछ उच्च खतरे वाले बर्ताव भी नोट किए गए हैं, जैसे मैसेज भेजना या हाथ से फोन पकड़ना इस्तेमाल करना। इन सब को रोकने के वास्ते पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के प्रारंभिक चरण पर अधिक सख्त कदम लागू किए जा रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट और पुलिस विभाग की ओर से कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू चलाया जाएगा।
0: और मंत्री परिषद की बैठक में एक और फैसला लिया गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का एक दूतावास पोर्टवी में खोला जाएगा। यूएई की ओर से दी गई मांग को मॉरिशस सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के तहत अहमद नासिर अल दहमानी को मॉरिशस में यूएई का पहला निवासी राजदूत नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अथॉरिटी अब कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व संभालेगा। इसकी अवधि 1 साल है। और कैबिनेट की अन्य फैसलों पर ये खास रिपोर्ट है।
1: मंत्रिमंडल की ओर से इस बात पर स्वीकृति दी गई है कि पर्यावरण मंत्रालय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज तमागे पब्लिक बीच पर तटीय इरोजन के संबंध में सलाहकारी सेवाएं प्राप्त करें। 2025 के दिसंबर महीने में अनुमति प्राप्त किए बिना मानव हस्तक्षेप हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल का कन्फिगरेशन ही बदल गया। असेसमेंट किया गया और संबंधित अस्थायी सुधार कदमों को लागू करने का फैसला लिया गया। पानी को प्रवाहित करने के लिए संबंधित मरम्मत कार्य किए जाएंगे। तटीय इलाकों पर करीब 150 मीटर की दूरी तक पत्थर रखने की व्यवस्था की जाएगी। एक स्टैंडिंग मॉनिटरिंग समिति कायम की गई है डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट की अध्यक्षता में, जिसमें मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। तमागे पब्लिक बीच की स्थिति के निरंतर मूल्यांकन करने के वास्ते मंत्रिमंडल की तरफ से इस बात का जायजा लिया गया कि परिवहन मंत्रालय की ओर से यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के संदर्भ में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी 8 से 13 मई 2026 के बीच। इसका शीर्षक है सेफ वॉकिंग एंड साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल हेल्दी सिटीज। मकसद है लोगों को जागरूक कराना कि राहगीरों और साइक्लिस्ट को किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। पुलिस विभाग और ट्रैफिक मैनेजमेंट तथा रोड सेफ्टी यूनिट की ओर से क्रैकडाउन कार्रवाइयां भी चलाई जाएंगी ताकि लोग ट्रैफिक कानूनों का पालन करें। बॉबू, मेबक और फ्लक में टीम तैनात, लोगों को जानकारियां दी जाएंगी। 11 मई को एक दिवसीय कंसल्टेटिव कार्यशाला भी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के सहयोग से नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी 2026-2030 की तैयारी में ये सहायक सिद्ध होगा। होलिस्टिक एडुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत टापू के प्राथमिक स्कूलों के बच्चे एडुकेशनल सत्रों में भाग लेंगे। रोड्रिक्स में भी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी सेल प्राइस ऑफ मोलासेस रेगुलेशंस 2026 के लागू किए जाने पर स्वीकृति दी है। इन कानूनों से 2025, 2026 और 2027 क्रॉप्स के लिए मोलासेस की बिक्री की अधिकतम कीमत कायम की जाएगी। एक सालाना एडजस्टमेंट भी होगा ताकि अगर सुधार लाने की जरूरत हो तो ऐसा किया जा सके। ये कंट्रोल एंड आर्बिट्रेशन कमिटी के सुझावों पर आधारित होगा और मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी बोर्ड तथा कृषि खाद्य ब्लू इकोनॉमी मंत्रालय दोनों की मंजूरी चाहिए होगी।
0: अंतर मंत्रालय समिति ने फैसला किया है कि ईद उल अधा 2026 के लिए बीफ का दाम 186 रुपये प्रति किलो तय हुआ है। आयातकों की 220 रुपये की मांग के बावजूद मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि ये रेट आम जनता के फायदे के लिए रखा गया है। ये रेट त्यौहार के 10 दिन बाद तक चलेगा। सरकार ने वादा किया है कि वे पूरी निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी मनमानी न करे। साथ ही जानवरों के व्यापार में कुछ ही लोगों का कब्जा खत्म करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं।
2: Le prix a été fixé par le gouvernement. Le prix initial qui était demandé par l'importateur, c'était de 220 roupies par kilo. Le gouvernement fin fait ce comité interministériel. Le gouvernement répète lui fin considère tout le prix.
3: सरकार द्वारा दाम निर्धारित किए जा चुके हैं। शुरू में 220 रुपए प्रति किलो की मांग की गई थी। सरकार की अंतरमंत्री बैठक लगाई गई और उसके द्वारा सभी दामों को लिखा गया, सभी लागत को भी, और तब ये फैसला लिया गया कि इसे 186 रुपए प्रति किलो होने चाहिए भावी ईद उल अधा के लिए। हमने एक उचित तरीका अपनाया है। हम सोचते हैं कि हद से ज़्यादा लाभ कमाने की ज़रूरत नहीं। सभी लागत को हमने देखा है, पहले ऐसा कभी नहीं किया गया, और तब हमने मैक्सिमम मार्कअप निर्धारित किया। चाहे लोग नाखुश होते हैं लेकिन सरकार अपनी स्थिति पर बनी रहेगी, राय नहीं बदली जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि मुनाफा काफ़ी नहीं, कई बहाने होंगे, ये उनकी राय होगी, वे स्वतंत्र होंगे, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अगली बार परमिट जारी करते वक्त इसे ध्यान में रखा जाएगा। मत भूलना चाहिए कि सरकार का मकसद सब प्रकार की अति को रोकना है, चाहे ग्राहकों को लेकर हो या फिर आयातकों को लेकर।
2: Parce que nous n'oublions pas que l'objectif principal du gouvernement c'est de pas autoriser toutes sortes d'abus que ce soit vers le consommateur que ce soit vers l'importateur. On a choisi
0: मॉरिशस पोर्ट अथॉरिटी ने कल दोपहर पर्यावरण मंत्रालय को बताया कि अंजन लिमिटेड की एक पाइपलाइन से भारी तेल लीक हो रहा है। ये लापी नाले के पास है। एमपीए ने बचाव शुरू कर दिया है। लातानी नदी के मुहाने पर लगभग 100 मीटर लंबी तैरती पार लगाई गई है। अंजन लिमिटेड ने तेल को रोकने और सोखने के लिए विशेष सामग्री लगाई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लगभग 200 से 500 लीटर तेल पानी में मिला और लापी नाले से लातानी नदी तक गया। वहां से ये बंदरगाह के मुख्य जलमार्ग तक पहुंच गया। पाइपलाइन की मरम्मत शुरू हो गई है और अब कोई नया लीक नहीं हो रहा है। तेल फैलने के कारण बंदरगाह के काम में कोई रुकावट नहीं आई है और कोई घायल नहीं हुआ है। जांच सप्ताहांत में भी जारी रहेगी। और पर्यावरण पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सेवा मंत्रालय में बदलाव हुआ है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार डॉक्टर धनंजय कावल ने कल शुक्रवार को तुरंत सेवा निवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। उनके पास अभी भी 4 साल की सेवा बाकी थी। इस फैसले के बाद शकुंतला देवी गजाधर नौबत को सरकारी सेवा सचिव सेक्रेटरी फॉर पब्लिक सर्विस के पद पर नियुक्त किया गया। वो भी पहले स्थानीय प्रशासन मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही थी। इस जल्दी सेवानिवृत्ति का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ये कदम कुछ दिन पहले जारी सर्कुलर के विवाद के बाद आया। सर्कुलर में सरकारी काम के नए टेलीवर्क नियम और फ्लेक्सिबल आवर्स बताए गए थे। इस दस्तावेज पर डॉक्टर धनंजय कावल का हस्ताक्षर था। उस दिन दोपहर जिम्मेदार मंत्री राज पेंचा ने तुरंत सर्कुलर रद्द करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि जिसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। लगभग एक हफ्ते बाद अपने नए आंदोलन का नाम बदलने के बाद पल बेरांजे आधिकारिक रूप से फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस इस शनिवार को लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर समर्थकों को दिन के 2:30 बजे वाक्वा फिनिक्स के नगर पालिका हॉल में एकत्र होने के लिए कहा गया है। FMP की में सदस्यता के लिए आवेदन जारी है। हम जोना बेरांजे FMP qui s'adresse à Kosunte.
4: Nous encore pouvons recevoir une demande d'adhésion et demain également nous pouvons enregistrer une demande qui a envie de rejoindre nos mouvements. Suite à ça, travail pour continuer dans chaque circonscription, pour continuer à organiser pour qu'ils nous capables aller vers l'Assemblée des délégués dans environ 3 mois.
0: ये मुशस मिनी जी स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार हुआ है। क्लिनिक फेरिया दो बों से कोर ने कल शुक्रवार को अपनी नई प्लेट मेड इन मोरिस सर्विसेज का अनावरण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री और एसोसिएशन ऑफ मोरिशन मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष जॉन पियर लिमकोंग भी मौजूद थे। 1930 में स्थापित ये संस्था अब देश की पहली निजी क्लिनिक बन गई है जिसे ये मान्यता मिली है जो आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2025 में प्रदान की गई थी। ये सम्मान क्लिनिक की देखभाल की गुणवत्ता मॉरिशस की विशेषज्ञता और पैलिएटिव केयर में क्लिनिक की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। दोनों कर्मचारियों के लिए हिजाब पहनने पर कोई साफ नीति नहीं थी। ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन EOC की रिपोर्ट में सामने आया है जो नादरा अमीर और मुशीरा अब्दुल्ला के उनके पूर्व नियोक्ता ENS अफ्रीका वकीलों के कार्यालय के खिलाफ तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट कल शुक्रवार 8 मई को प्रकाशित हुई। EOC का कहना है कि दोनों महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ। जून 2025 में हिजाब पहनने के कारण उन्हें निलंबित किया गया और बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने नियोक्ता के आदेश नहीं माने। आयोग ने यह भी बताया कि नादरा आमिर और मुशीरा अब्दुल्ला ने कोई अनुबंध यानी काम का कागज़ साइन नहीं किया था, इसलिए चाहे कोई धार्मिक नियम किसी गाइडलाइन या नौकरी की शर्तों में लिखा हो, बिना काम के कागज़ के नियोक्ता ये साबित नहीं कर सकता कि ये उनके काम की अनिवार्य शर्त थी। नादरा आमिर और मुशीरा अब्दुल्ला के वकील इम्तियाज मामूजी ने ये ऐलान किया। विदेश में चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को सीधे तकनीकी सहयोग दिया था। ये खुलासा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। भारत में सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। रिपोर्ट के अनुसार चीन के सरकारी चैनल CCTV को दिए गए इंटरव्यू में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियरों ने माना कि उन्होंने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीकी सहायता दी थी। इसे पहली बार चीन की ओर से आधिकारिक कबूलनामा माना जा रहा है।

मॉरीशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो कल रविवार 10 मई को सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व दक्षिण की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रही है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। बाद में मौसम में सुधार आएगा और रात्रि के समय आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 4 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। मछेरों, प्लेजर बोट वालों और जनता से समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 6:28 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:44 पर होगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: सल्फेरिनियो नंबर एक वाकवा में, सल्फेरिनियो नंबर एक वाकवा में 60 साल की 60 ईयर्स और की श्रीमती राधा हावती रामदोनी, श्रीमती राधा हावती रामदोनी पैदाइशी नाम वुमेड, पैदाइशी नाम वुमेड और जो मुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर सल्फेरिनियो नंबर एक वाकवा से उठाई जाएगी। Cremation today at 4 p.m. Mont-Salmant VOS number 2, Plaine-Magnon-Mé. Mont-Salmant VOS number 2, Plaine-Magnon-Mé. Chonti Sal ki, 34 years old ki. Kumari Archana Pooja Singh Kedu. Kumari Archana Pooja Singh Kedu. Jo Dum Dum naam si zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi. Unki arthi आज शाम चार बजे उनकी माँ श्रीमती सुलमा, उनका जनाजा आज शाम चार बजे उनकी माँ मिसिस सुलमा केडू के मकान मुसलमान वीओएस नंबर 2 प्लेन-मैग्नन से निकाल कर दफनाने के लिए प्लेन-मैग्नन की कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। रायरोड बेजुतोंबू में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमादीप रामजतन, श्री प्रेमादीप रामजतन जो ताताई नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर रायरोड बेजुतोंबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामाओशांग की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। बिल्डिंग रोड बुआ शेरी में 22 साल के 22 ईयर्स ओल्ड के श्री विशेष आदिन जो अश्विन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पिता श्री अजय आदिन के घर बिल्डिंग रोड बुआ शेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम बुआ की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। विक्टोरिया रोड थ्रू दो दूस में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती किसनावती सानीचर जो सत्या नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री सुनील सानीचर के घर विक्टोरिया रोड थोदोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोदोदूस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉय रोड फोंजुसाक में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दीप नारायण सिराज जो रोहित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री केविन सिराज के घर रॉय रोड फोंजुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजुसाक की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। नंबर 77 मोंसेलमान ओबन बांबू में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री महादेव कहानू जो जिसिक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 77 मोंसेलमान ओबन बांबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट सोवर बांबू की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। नंबर 94 पियतों पे अलावा सेंट क्वामी 88 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यर्ज रसियान पैदाइश नाम रामनुत और जो रानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे आज दिन की Despre ce un kibiti și să distrasion ki căr nămbăr joran bipiet un pe la vară sunt coase o tacăr în timp să înscar chilie, si pai pâli, vali de pat kishmășan bumili, jai jai gikrimișin tudi at 10 a.m. Janki Street, Putrodo Village, mi Janki Street, Putrodo Village, mi Unasi Sale, ki 79 years old, ki shmeti bidwanti, madu shmeti bidwanti, madu, pedaishi nam suhan, pedaishi nam suhan, or jo vanti nam se, zada jani jati tikmati hugilm kirti ajdinki. Despeji ajdinki, despeji unki beti shri sanjay madu ki kar, Janki Street, Putrodo Village, se utakar, in timsenskar kili, belmon, Putrodo Village, ki shmashan bumili, jai ki kribshu today at 10 a.m. Number 10, Saint Famille Road, Saint Kwame. Number

Ikatis, Sainte Famille Road, Saint-Quamy, Jongsat Sal, Ki, 64 years old, Ki, Shri Kumar Neval, Shri Kumar नेवल जो दत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके घर नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा से उठाकर वाली दिफ्रैत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 10 AM फर्स्ट रोड फोन जुसाक मी 44 साल की 44 years old की श्रीमती दानिशा रघुबीर पैदाइशी नाम निरंजन जो सुनंदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनके घर फर्स्ट रोड फोन जुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोन जुसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:30 AM रोड थ्रू दो दूस में 84 साल की 84 years old की श्रीमती कुलमंती बिकारी पैदाइशी नाम होलुमन और जो मांती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो ट्वेस्ट रोक होटल की पूर्व कर्मचारी थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री शैलेश बिकारी के घर रोड थ्रू दो दूस से उठाकर दफनाने के लिए थोड़ो दूस के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM जोली स्ट्रीट कैट्सर में 49 साल की 49 years old की श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद पैदाइशी नाम मंगत्रोई की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी उनके पति श्री शरद चंद द्वारका प्रसाद के घर जुड़ी स्ट्रीट का से उठाकर अंतिम संस्कार की ये दो फ्रिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। वैसे समय के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। Chemin Chantenay Gentilly Saint-Pierre, 82 साल के 82 years old के श्री तागोमन महाजिया जो जैक्सन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता देवी महाजिया के घर Chemin Chantenay Gentilly Saint-Pierre से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rosalmé, 67 साल की 67 years old की श्रीमती पुष्पा बिसेसर जो रीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के सवा एक बजे उनके घर Avenue Guy Rosemont Trèfle Rosalmé से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौन ले व्यू रोजल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 1:15 PM पालमा रोड कैथरबोन में 77 साल की 77 years old की श्रीमती पुष्पा माला बुतन पैदाइशी नाम राम और जो मीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के सवा एक बजे उनके घर पालमा रोड का थोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:15 PM फेविक्स दिवातवा शांडमा स्पोर्ट्रीमी 70 साल के 70 years old के श्री बिपिन रोही जो बिपिन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर फेविक्स दिवातवा शांडमा स्पोर्ट्री से उठाकर अंतिम संस्कार की थोंगबो की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रमशन टुडे एट 2 PM रॉयरो त्यारोज में 73 साल के 73 years old के श्री रामेश्वर गिरधारी जो रामेश बाजाओ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल रविवार को सुबह 9:30

0: पुजी सुबह 9:30 उनकी पत्नी श्रीमती माला देवी गिरधारी के घर वारोत्या खोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामा उषा की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। नंबर 9 रू दे ला रेनेसांस फ्रांस में, नंबर 9 रू दे ला रेनेसांस फ्रांस में 72 साल की 72 years old की श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी, श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जो अनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो पहले लीम बेटो वाकुआ रहती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी सोमवार 11 मई को दिन के पौने दो बजे उनके घर नंबर 9 रू दे ला रेनेसांस फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे 11 मई एट 1:45 PM। 62 साल के 62 years old के श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जो पिपित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी मंगलवार 12 मई को दिन के 10 बजे पिजित रिविया के मोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोली की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 12 मई एट 10 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Welcome to RM2
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
2: RM2
4: Radio Musti.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
5: सुबह के 7 बजे है
6: टाइमलेस तड़का
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
6: टाइमलेस तड़का।

0: Timeless
1: 떨까 RM2 Radio Musti
2: सुप्रभात, 7:05 हो चिल्ला है। सुबह को आपको मिला रिया का साथ। अपने मनी हाजिर है आपकी टाइमलेस हिट्स के साथ। 9 बजे तक टाइम ट्रैवल करेंगे साथ में, तो यहीं पर जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
3: रेडियो मस्ती
0: टाइमलेस तड़का।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
2: Timeless tadka.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: And yes, 9 बजे तक bringing you the perfect mix of timeless hits, good vibes और थोड़ा सा morning तड़का. Saturday का दिन है, आज traffic कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अगर अभी आप office जा रहे हो, आपको कहेंगे बूँ को खाजने से ही, stay tuned to RM2 Radio Masti.
2: You're listening to Radio Masti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए अभी के लिए सुनते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स आपसे विकास जी. गुड मॉर्निंग.
5: गुड मॉर्निंग नीलमणि एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में बस एक महीना भी बाकी है. 11 जून से ये प्रतियोगिता, विश्व स्तरीय प्रतियोगिता आरंभ हो रही है. उससे पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 अपनी चरम सीमा, अपने क्लाइमैक्स पे आ गया है. आज से इसका 36वां सप्ताह आरंभ हो रहा है विद येट अनदर धमाकेदार मुकाबला, यानी लिवरपूल वर्सेस चेल्सी. आज का ये अर्ली किक ऑफ होगा. लिवरपूल के लिए बड़ा ही मायने रखता है ये मैच, क्योंकि उसे यूरोपियन चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाइड होना है और अभी तक तय नहीं हुआ है. हालांकि लिवरपूल और एस्टन विला भी चौथे और पांचवें स्थान पर हैं बराबर अंकों के साथ. पांच टीमें क्वालिफाइड होंगी. आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले से ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो गए हैं और अब और दो जगहें बची हैं. लिवरपूल वर्सेस चेल्सी आज का अर्ली किक ऑफ 3:30 PM. और किंतु पिछले सप्ताह के ड्रॉ और पांच अंकों की दूरी के बावजूद मैनचेस्टर सिटी अभी भी डटी हुई है, क्रीज पे डटी हुई है, मैदान पे अभी तक डटी हुई है खेलने के लिए और जीतने के लिए. आज द सिटीजन्स अपना लेट मैच जीतकर ये फासला और भी कम करने की कोशिश करेंगे. अभी सिटी और आर्सेनल के बीच 5 अंकों का अंतर है, किंतु सिटी ने एक मैच कम भी खेला है. इसलिए हार्दिक शुभकामनाएं दोनों टीमों को. मैनचेस्टर सिटी आज रात अपना लेट मैच खेलने वाला है, सो इन सब पर जानकारी देते रहेंगे. आज के फिक्स्चर सुनिए. आज का पहला मैच होगा 3:30 PM लिवरपूल वर्सेस चेल्सी. ये मैच आज 3:30 PM खेला जाएगा. उससे पहले बता दें कि लिवरपूल अपने पिछले दो मैच हार चुका है चेल्सी के हाथों पर. उस समय की चेल्सी और आज की चेल्सी में बड़ा अंतर है. आज चेल्सी बिना कोच के भी हैं और काफ़ी दूर है अभी लीग टेबल में, जबकि लिवरपूल को कंफर्म करना है. सो लिवरपूल वर्सेस चेल्सी आज एनफील्ड में आज 3:30 PM ये मैच खेला जाएगा. और इस स्लॉट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये हर एक मैच. केवल 3 मैच बचे हैं और उन्हें यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए कम से कम फेस बचाना है. और ये मैच बहुत ही कड़ा साबित होगा दोनों के लिए. लिवरपूल चेल्सी आज 3:30 PM. 6 PM से ब्राइटन वर्सेस वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स. फुलहम का मुकाबला बोर्नमुथ से. सन्डरलैंड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी एक बड़ा सुंदर मुकाबला साबित होने वाला है स्टेडियम ऑफ लाइट में. और आज रात 8:30 PM मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. सिटी अपना लेट मैच खेलने वाली है. जीत की स्थिति में वे केवल 2 अंक दूर होंगे आर्सेनल से, जो कल अपना मैच खेलेंगे. सो कल के मुकाबले इस प्रकार हैं. कल का लेट मैच 7:30 PM 7:30 PM बड़ा ही कड़ा मुकाबला वेस्टहम यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल. द गनर्स यदि अभी फिलहाल 5 अंक आगे हैं तो सिटी की जीत की स्थिति में केवल 2 अंकों की दूरी पर वे होंगे. और ये मैच वेस्टहम के मैदान पे खेला जाएगा. द हैमर्स जो अभी भी संघर्ष

जो अभी भी संघर्ष, उससे पहले शाम 5 बजे नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, क्रिस्टल पैलेस एवर्टन, बर्नली का मुकाबला एस्टन विला से होगा। सो लीग टेबल में आर्सेनल पहले स्थान पर है, उसके पास है 76 अंक 76 पॉइंट्स। मैनचेस्टर सिटी 71 71, 5 अंकों का अंतर, सिटी ने एक मैच कम खेला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 64 64, लिवरपूल 58 58, इतने ही अंक एस्टन विला के पास भी। बोर्नमुथ धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ती जा रही है, वो छठे पोजिशन पर है 52 अंक लिए 52 पॉइंट्स। मैथमेटिकली अभी भी बोर्नमुथ एस्टन विला और लिवरपूल को पार कर सकती हैं, पर तब की बात, तब अभी के लिए इनके बीच अभी 6 अंकों का अंतर है। आखिरी पोजीशन पर है वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स बर्नली, जो रेलीगेट हो चुकी है। वेस्टहैम के पास है 36 अंक 36, टोटनहम हॉटस्पर 37, नॉटिंगहम फॉरेस्ट के पास 42 42, क्रिस्टल पैलेस 43, लीड्स यूनाइटेड के पास भी 43 43 पॉइंट्स। सो इतना सब कुछ इंग्लिश प्रीमियर लीग को लेकर। कल कुछ और मैच खेले गए इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में। कल का जो प्रमोशन प्लेऑफ सेमीफाइनल था वो ड्रॉ पर संपन्न हुआ, हल सिटी 0 मिलवॉल 0। स्पेन के ला लीगा में लेवांटे ने ओसासुना को 3-2 से परास्त किया। जर्मनी के बुंडेसलीगा में भी बोरुशिया डॉर्टमुंड 3 फ्रैंकफर्ट 2। इटली के सीरिया में टोरिनो ने सासुओलो को 2-1 से तोड़ा, जबकि फ्रांस के लीग ए में रेसिंग क्लब दे लांस अभी तक डटी हुई है। उसने कल अपने होम मैदान पे नांत को 1-0 से हराया, और ऐसे में लांस और पारी के बीच अभी केवल 3 अंकों का अंतर है, हालांकि पारी सैन जर्मेन ने एक मैच कम खेला है। भारत के इंडियन सुपर लीग में कल उड़ीसा ने एवे जाकर एससी दिल्ली को 2-1 से परास्त किया। बता दें कि स्पेन के ला लीगा में और पेन अभी सहने वाला है रियल मैड्रिड, टीम में टीम डवाडोल है, अभी काफ़ी उसमें समस्याएं चल रही हैं, और ऊपर से अभी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच 11 अंकों का अंतर है। कल रविवार की रात द एल क्लासिको खेला जाएगा न्यूकॉम में, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, जीत की स्थिति में सही, पर 1 अंक भी काफ़ी होगा बार्सिलोना को ये चैंपियनशिप जीतने के लिए। और यदि ऐसा हुआ रियल मैड्रिड के खिलाफ तो सोने पे सुहागा। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड कल संडे के लिए ये मैच रखा गया है सू रिजर्व। सो देखते रहिए और सुनते रहिए, कल ये मैच खेला जाएगा कल रात 11 बजे न्यूकॉम में, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। फुटबॉल में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का टैलिस्मैन ब्रूनो फर्नांडेज बना फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन का फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर। अपने बेहतरीन 19 डिसाइसिव पासेस और टीम का हौसला बढ़ाने एवं गोल के सामने जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए इंग्लैंड के फुटबॉल राइटर्स ने 3 मैच रहते ब्रूनो फर्नांडेज को चुना, जो थिएरी हेनरी और केविन डी ब्रुइन के ऑल टाइम रिकॉर्ड से केवल 1 असिस्ट दूर है, और मैच बचे हैं 3, इसलिए हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद सलाह का उत्तराधिकारी सक्सेसर द असिस्ट किंग ब्रूनो फर्नांडेज आज रात संदलन का सामना करेगा स्टेडियम ऑफ लाइट में। बोर्नमुथ ने इस बीच अपने 21 वर्षीय 21-year-old स्पैनिश डिफेंडर एलेक्स रिमेनेज को आज के मैच के लिए सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर अन के भन बोलने और लिखने के लिए क्लब इन सब पर जांच कर रहा है। टेनिस में वर्ल्ड नंबर 4 विश्व नंबर 4 नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन के दूसरे राउंड और प्रथम मैच में ही लुढ़क गया, उसे एक वाइल्ड कार्ड दिया गया था, पर पहले ही मैच में ऑस्ट्रिया के 20 वर्षीय 20-year-old डिनो प्रिज्मिक ने नोवाक जोकोविच को 2-6 6-2 और 6-4 से आउट किया, यानी जोकोविच अपना पहला सेट जीत गया था। पिछले 12 मार्च से वो मैदान पे उतरा है चोट लगने के कारण, कंधे पर चोट लगी थी, पर ये पहला मैच जहां पर वो 6 बार चैंपियन बन चुका है इटालियन ओपन की मिट्टी पर, क्ले कोर्ट पर, ये एक बड़ा झटका है नोवाक जोकोविच के लिए, जो 24 मई से फ्रेंच ओपन रोलां गारोस में हिस्सा लेने वाला है। लेकिन 2 दिन पहले 22 मई को वो 39 ईयर ओल्ड का हो जाएगा, यानी रोलां गारोस के शुरू होने से 2 दिन
पूर्व। क्रिकेट में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के अंतर्गत कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से परास्त किया।

0: ब्रूटल फिन एलन ने 47 गेंदों में ठीक 100 रन बनाए और वो नाबाद भी रहा। आज इसी आईपीएल में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। मॉरिशस हैंडबॉल एसोसिएशन कल रविवार 10 मई को फेनिक्स के जिम्नेजियम में एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच आयोजित कर रहा है, जिसमें मॉरिशस की हमारी अंडर 18 लड़कियां, 18 साल से कम हमारी खिलाड़िन रेनियन टापू के बॉडीनेफ टीम का सामना करेंगी। सो कल दिन के 11 बजे फेनिक्स के जिम्नेजियम में हमारी अपनी लड़कियों का हौसला बढ़ाने जरूर जाइए, जनता आमंत्रित है। और सिविल सर्विस फुटबॉल टूर्नामेंट में कल गायतोरिनाल फुटबॉल टीम ने पीएमओ को 3-2 से परास्त किया। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू विकास जी।
2: Qualité déco, puis annonce-vous sous Mega Sales pour 10 semaines seulement. Mob à partir 25 roupies, granit à partir 2000 roupies, sanitaire à partir 3500 roupies, parc et laminé et SPC. Avec la pause gratuite, s'il vous plaît. Et beaucoup des autres super offres pour toute la case. Qualité déco, et n'a tout pour décoration intérieure et extérieure. Recette parvis décoratif, quartz, robinetterie, la lumière, meubles, salle de bain et beaucoup des autres encore. Visite-nous tous showroom à travers l'île. Fast type de paiement disponible. Plus renseignements, l'autre page Facebook, Qualité déco.
3: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
4: RM2 Radio Musti.

0: टाइमलेस तड़का।
1: RM2 Radio Musti।

0: एक खिलाड़ी, लाल कुल्हाड़ी, काली पहाड़ी, मोटा सेठ, लोहे का गेट, हो गई भोर, भागा चोर, नाचा मोर, मच गया शोर।
1: जी हाँ, द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज। अगर अभी अभी आप कनेक्टेड हुए हैं, गुड मॉर्निंग, इट्स योर आरएमजू रेडियो मस्ती।

Yes, it's 7:59, कुछ ही देर में होने वाला है भोजपुरी में समाचार एंड वापस उन्हीं टाइमलेस गलियों में, तो यही जुड़ रही है अच्छे म्यूजिक पर वाइब करते हैं साथ में आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।

नमस्ते, भोजपुरी में समाचार सुना जा। ये गो ऐसन दोस्ती बाती जो समय के चलते मजबूत हो रहल और कल रात मुकामी जस्ती गहरा हो गल बातें। यूरोप डे के मौका पर राष्ट्रदूत उसका बेनेडिक्ट देश के राजनीतिक और कूटनीतिक हस्ती के तेलफेया में एकत्र कल रहलन। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के 56 बरिस पुराना एगो प्रतीकात्मक चित्र सौंपल गल, जोन मॉरिशस और ब्रसल्स के बीच सहयोग के शुरुआती कदम के सबूत बातें। सरकार गाड़ी चलावे बखत फोन इस्तेमाल करे पर करा कदम उठावता, मंत्रिपरिषद सड़क नियम बदले के मंजूरी दे दिले बातें। अब कोनो भी चालक जोन फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़ी ओके पहले नियन 3 से 6 पॉइंट नहीं बखीर 5 से 10 पॉइंट की सजा मिली। ये फैसला उस समय लेवल गल जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग नवा पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के लागू हुए के पहल के बाद पहल का रिपोर्ट जारी कर लग। रिपोर्ट में निम्न संकेत दिखता, सड़क सुरक्षा बेहतर होता और कई गो जगह पर हादसा में कमती लोग घायल हो रहा। अधिकारी लोग देखता कि सब जना के अब तनी जस्ती निमन व्यवहार भी बाते, किंतु अभी भी कई गो जना खतरा होला काम करत हवन, SMS भेजत हवन और फोन हाथ में पकड़ के गाड़ी चलावत हवन, जोन अभी भी बड़का हादसा के कारण बाते। यही खातिन इनवा नियम लागू कर गलवाते, जिनमें लोग जिम्मेदारी से गाड़ी चलयन जा। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लेवल गल के यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE के एगो दूतावास पोर्टवी में खोलल जाए। UAE के ओर से लेवल गल मांग की मॉरिशस सरकार मंजूरी दे ले बाते और अहमद नासिर अल दहमनी के मॉरिशस में UAE के पहल का निवासी राजदूत नियुक्त करल जाए। एक संगे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अथॉरिटी अब कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की नेतृत्व करी। एक अवधि एगो बरिस के रही। कोनो एगो हफ्ता बाद अपन नवा आंदोलन के नाम बदले के बाद पल बेरांजे आधिकारिक रूप से फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के ई सामने के लॉन्च करी। ई अवसर पर समर्थक के दिन के 2:30 बजे वाकवा फिनिक्स नगर पालिका हॉल में एकत्र हुए के बोलल कल बाते, FMP में सदस्यता खातिर आवेदन जारी बाते। विदेश में चीन पहल का होला ये स्वीकार कर ला कि वो गैल बरिस भारत और पाकिस्तान के बीच हो संघर्ष के बखत पाकिस्तान के सीधा तकनीकी सहयोग दिले रहल। ये खुलासा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट में करल गल बाते। भारत में इस सैन्य कार्रवाई के ऑपरेशन सिंदूर नाम देवल कर रहल। 22 अप्रैल 2025 के जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में होल आतंकी हमला में 26 जना की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकर रहल। संघर्ष के बखत चीन पाकिस्तान की तकनीकी सहायता दिले रहल और वो एक पहल का होला चीन न देने से आधिकारिक कबूलनामा मानल जाता।

0: स्वागत है आपका वंस अगेन आरएमजू रेडियो मस्ती पर. गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम फॉर योर वेदर अपडेट्स. तो चलिए सुनते हैं टीना से.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ऑन इट टू स्विनर्स.
3: मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो कल रविवार 10 मई को सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी. इसके साथ ही दक्षिण पूर्व दक्षिण की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रही है. पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर. बाद में मौसम में सुधार आएगा और रात्रि के समय आसमान साफ रहेगा. तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो

0: सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 4 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। मछेरों, प्लेजर बोट वालों और जनता से समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 6:28 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:44 पर होगा।
1: De vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Le gel douche 500 ml Hugva à 79,95 € et 5 kg de riz basmati Mahal 1121 à 289,95 €. Et préparez-vous, la fête du pain arrive très bientôt chez Winners. Des prix en beauté, plus d'économie et toujours plus de plaisir chez Winners.
2: On est tous winners!
3: RM2
4: Radio Musti
3: Timeless Tadka
4: RM2
5: Radio Musti
3: Timeless Tadka

0: Timeless तड़का RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, वैसे आना जाना तो रहेगा. एंड आने से याद आया कि आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं फुल स्पीड पर. आप है कुमार दाबी जन जी, एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को और जॉगिंग कर रहे हैं. अरे लगे रहो जी, कीप फिट, ऐसे ही स्टे हेल्दी. और आप मांग रहे हैं नेक्स्ट गाना अपने लवली पापा श्याम दाबी चंद को, जो कि रहते हैं पहे बया. एंड वी हैव नेक्स्ट मैसेज. आज है आपके भैया विनय का बर्थडे. आज वो 60 ईयर्स के हो गए हैं. आप हैं उनकी बहन आशा और उन्हें सेंड कर रहे हैं बहुत सारा प्यार. एंड वो हैव फ्लैग से जना जी, जो कनेक्टेड हुए हैं हमसे. एंड वो मांग रहे हैं अपनी बेटी रीमा, जनिता, शेष तनशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सुसरण फैमिली फ्लैग के रहने वाले को एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं और बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. तो ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा एंड आपके स्वीट स्वीट मैसेजेस भेजते रहिए. आप यही पर RM2 रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि टाइमलेस गाने ऑन द वे है.
0: टाइमलेस तड़का.
1: RM2 Radio Musti.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: हमेशा याद रखें दोस्त कि जो आपका करंट सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं होता। बुरे दिन भी उस प्लेलिस्ट के सैड सॉन्ग्स की तरह होते हैं जो इवेंचुअली स्किप हो ही जाते हैं। तो आज आप जहां पर भी हो आप वही को एंजॉय कीजिए।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: RM2.
6: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: सुबह का मूड अगर थोड़ा स्लीपी होता है तो टेंशन मत लीजिए, हम लेकर आए हैं टाइमलेस गाने 9 बजे तक। मस्त वाइब्स, फुल तड़का वाला एनर्जी ऑन है। और हॉनेस्टली अलार्म से ज़्यादा पावरफुल तो फेवरेट गाना होता है, तो यही पर स्टे ट्यून क्योंकि आपके लिए बहुत सारे अच्छे गाने हैं 9 बजे तक। एंड ओसो कुछ ही देर में और भी मैसेजेस पढ़ने वाले हैं, सो यू नो व्हाट टू डू, 5499-1294 पर आपके मैसेजेस भेजना ना भूलें।
2: You're listening to Radio Mastery.

0: Timeless
1: 다르가 RM2 Radio Musty.
2: Yes, फिर से आपके मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। आप है हमारी बड़ी यालीश, गाना मांग रहे हैं अपने लिए और विश कर रहे हैं आप सभी को हैप्पी सैटरडे। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, प्लीज डेडिकेट नेक्स्ट सॉन्ग टू मम्मी सुजाता, बेटा पीयूष, दीदी सुधा, ब्रो साइलेश एंड प्रिंसेस कियाना ज्योति की तरफ से। एंड वी हैव विना जगेसर जी जो कि कनेक्टेड है बेलव्यू मोबाइल से। एक गाना आपके सभी परिवारों के लिए, सभी दोस्तों के लिए और MBC टीम के लिए। एंड वी हैव टुडे द बर्थडे ऑफ शिवानी नोथू बेलमा से, बेटे केशव और पापा की तरफ से बेस्ट विशेज, लॉट्स ऑफ लव। एंड वी हैव बदवाग विदेशी जी टयाक से जो मांग रहे हैं कोई भी रोमांटिक गाना अपने अनुषा केदन के लिए जो कि माताबा के रहने वाले हैं, तो आपके लिए ज़रूर गाना चलाएंगे। एंड वैसे आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड बेली डांस डे, तो साथ में वाइब करते हैं इस नेक्स्ट ट्रैक पर।
1: Radio Musty.
0: Hit music only.
1: Feels a musty. Radio Musty.

अलविदा लेते हैं। होप यू हैड अ ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग, यहीं पर कनेक्टेड रहना क्योंकि नेक्स्ट आने वाली है बॉली ब्रंच में मनीष मां आपका साथ देने के लिए। तो यही आरएम2 रेडियो मस्ती पर कीप वाइबिंग।

नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। ये एक दोस्ती है जो समय के साथ मजबूत हुई है और कल रात मुकामी और गहरी हो गई, जहां यूरोप डे के मौके पर एम्बेसडर ओस्कर बेनेडिक्ट ने देश की राजनीतिक और कूटनीतिक हस्तियों को डेल्फिया में एकत्र किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र सौंपा गया, जो मॉरिशस और ब्रसल्स के बीच सहयोग की शुरुआत कदमों का सबूत है। सरकार ने गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करने पर कड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने सड़क नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी चालक जो फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़े पाया जाएगा, उसे पहले की तरह 3 से 6 पॉइंट्स नहीं बल्कि 5 से 10 पॉइंट्स की सजा मिलेगी। ये फैसला उस समय आया है जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग ने नए पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के लागू होने के बाद पहली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में अच्छे संकेत दिख रहे हैं। सड़क सुरक्षा बेहतर हो रही है और कुछ जगहों पर हादसों में कम लोग घायल हो रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के एक दूतावास पोर्टी में खोला जाएगा। यूएई की ओर से दी गई मांग को मॉरिशस सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के तहत अहमद नासिर अल दहमानी को मॉरिशस में यूएई का पहला निवासी राजदूत नियुक्त किया जाएगा। लगभग एक हफ्ते बाद अपने नए आंदोलन का नाम बदलने के बाद पॉल बेरांजे आधिकारिक रूप से फ्रॉन्ट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस को इस शनिवार लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर समर्थकों को दिन के 2:30 बजे वाकुआ फिनिक्स के नगरपालिका हॉल में एकत्र होने के लिए कहा गया है। FMP में सदस्यता के लिए आवेदन जारी है। सरकारी सेवा मंत्रालय में बदलाव हुआ है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार डॉक्टर धनंजय कावल ने कल तुरंत सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। उनके पास अभी भी 4 साल की सेवा बाकी थी। इस फैसले के बाद शकुंतला देवी गजाधर नौबत को सरकारी सेवा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वे पहले स्थानीय प्रशासन मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही थी और इस जल्दी सेवानिवृत्ति का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ये कदम कुछ दिन पहले जारी सर्कुलर के विवाद के बाद आया। सर्कुलर में सरकारी काम के नए टेलीवर्क नियम और फ्लेक्सिबल आवर्स बताए गए थे। इस दस्तावेज पर डॉक्टर धनंजय कावल का हस्ताक्षर था। उसी दिन दोपहर जिम्मेदार मंत्री राजपेंसिया ने तुरंत सर्कुलर रद्द करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि जिसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज की चर्चा कार्यक्रम में श्रम दिवस पर चर्चा जारी रहेगी। किरण जानकी के मेहमान होंगे आप्रवासी घाट ट्रस्ट के चेयरमैन सुखेन रामदास और धर्मानंद गोबिंद। तो 9 बजे के इन समाचारों के बाद दिन के 10 बजे तक आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मिर्चस पर। विदेश में अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। उसने कहा कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी जहाज़ों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में ये कदम उठाया है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसलिए दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया था। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।

0: 9:10 हुए हैं। गुड मॉर्निंग, सैटरडे का दिन है, ऊपर से हम इतने इतावले हो गए हैं यहाँ पर आपका साथ निभाने के लिए। थैंक यू सो मच गोज़ आउट टू नीलमणि जिन्होंने आपका भरपूर साथ निभाया है सुबह से लेकर अभी तक। अभी तो सुबह से ही है, 9:10 तो हो चुके हैं यहाँ पर जुड़ने के लिए। दिस धन्यवाद देना चाहते हैं मनीष मागे आपका साथ निभाने के लिए टिल 12 बजे। सो हैव फन एंड फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अगर ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव सेफ, अगर घर पे हो तो बी विद फैमिली, बी विद फ्रेंड्स, बी विद अस।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: धमकी धमकी लागे। वैसे मैं जानती हूँ कुछ लेजी लेजी लोग हैं जो हमारे साथ लिसनर्स हैं जो उठ रहे हैं अभी जनाब लोग। सो उठा दो एंड हैव फन, क्योंकि ईच एंड एवरी मिनट काउंट्स इन योर लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो आपको मौका मिला है इन दिस वीक टू डू समथिंग रियली दैट मैटर्स, डू समथिंग दैट यू नीड टू डू, और जो सारे जो पेंडिंग काम है जो आपने पोस्टपोन कर दिया, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, स्टॉप इट एंड प्लीज वेक अप एंड हैव फन। एंजॉय कीजिएगा अपने मॉर्निंग को, अपने वीकेंड को हमारे साथ ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रंच आरएम2 रेडियो मस्ती,
0: यहाँ पर थोड़ा सा तड़का डालने के लिए और वाइब और बीट डालने के लिए सुबह सुबह में आपके ब्रेकफास्ट टीम में हमको भी शामिल कर लो। 5991294 पर आ जाए आपके मैसेजेस।

हम न सिर्फ लंदन को ठुंका रहे हैं यहाँ पर पंजाब से रमेश सिंह जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कैसे हो आप? कह रहे हैं हाय मॉरिशस, गुड मॉर्निंग आप दे। वैसे यहाँ पर आई नो लाइक 1 आवर 30 मिनट्स का ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर तो बच्चों का होगा 11 बजे, नो डाउट। तो आप एंजॉय कर लो, लंच टाइम भी होने वाला है, सो यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम आप दे। रमेश जी, थैंक यू सो मच पंजाब से साथ निभाने के लिए। यहाँ पर हाय मनीषमा, मैं विश्वानी फ्रॉम लवोंचे। आज मेरे बेटे अक्षय का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस फ्रॉम अंजनी। मामा विश्वानी, पापा है दिवेश, ब्रदर है आदर्श एंड ऑल सीताराम फैमिली, हैप्पी बर्थडे।

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती।
1: ज्यादा से ज्यादा हम 18वां जन्मदिन मना रहे हैं फॉर प्रिंसेस इशाली सिटिया ऑफ रोड्रिग्स। अरेंज श्वेता रवीश प्रशाल रवीश एंड हैप्पी फैमिलीज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बात है। वैसे दिस वन के साथ टू ईच एंड एवरीबडी जो कि हमारे साथ रेडियो मस्ती के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह का टाइम है मैं जानती हूँ, लेकिन इवनिंग के लिए शाम के लिए कुछ तो प्लान किया होगा, बता दो। You can share with us. यहाँ पर तो 9:30 बज रहे हैं and have a wonderful, wonderful time ahead with RM2 Radio Masi. यहाँ पर देवीना जो कि हमारे साथ है अभी वो ड्राइव कर रही है going for shopping. Family के साथ I was waiting for this weekend for shopping and thank you so much for the amazing playlist. Thank you.
2: Body Brunch RM2 Radio Masi.

ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: कौन है, कहां से हो, भेज दो मैसेजेस ऑन 549 and 1294 पर।
1: Body Brunch
2: RM2 Radio Masti।
0: चलिए जी, यहाँ पर आपके मैसेजेस के बहुत छार हो रहे हैं, पर लेते हैं नमस्ते जी सभी टीम को। देवी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एक गीत मांगती हूँ मेरी नाती के लिए, शिवम है उनका नाम, आज वो 13 साल के हुए हैं। वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई हो। और मेरी तरफ से भेज दीजिएगा इतना सारा प्यार। ओके जी, नाती यानी कि आप नानी हो, देवी नानी जी, थैंक यू सो मच ये मैसेज भेजने के लिए। यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स माय वाइफ्स बर्थडे, विश्वानी बुदन का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम हस्बैंड है विक्रम सोन विग्नेश बुदन, एक्चुअली इट्स भुवन, रेडियो मस्ती इन ऑल भुवन फैमिली ऑफ पेटिट कबान कौन द मास्क पावे। जिनको याद नहीं है विश्वानी भुवन का जन्मदिन, प्लीज गो देयर, विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे भुवन फैमिली ऑफ कौंदमास पावे। आपको याद दिला दिया मैंने ये तो रेडियो का काम है ना, नॉट टू मिस एनीथिंग एनी पर्व। सो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी, कैसे हो, वेरी वेरी स्वीट सॉन्ग्स। वेरी मेरी पोती आधिया का जन्मदिन है आज, वो 1 साल के हुए हैं, क्या बात है, शुभकामनाएं भेज रहे हैं दादा राज, दादी अनीता, पापा अंकुश, मामा आशिमा, बड़े पापा हैं अंतेश, बड़ी मामा हैं मनीषा, कजिन है हमेशा और कजिन अंश, नानी है इंद्रानी, रमा और ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको सैटरडे इस दिन के लिए विश करना चाहते हो। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अनीता, फ्लिक ऑन फ्लैग से ये मैसेज आया है। सो वेरी हैप्पी बर्थडे आधिया, आप बस जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंच जाए और बी सक्सेसफुल, बी हेल्दी, हमेशा मम्मी पापा का नाम रोशन करना। ओके, मैं नहीं जानती, यू विल अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बर्थडे, नहीं समझ आएगा, लेकिन आई नो कि सही जो मम्मी पापा सुन रहे हैं, आज आपका जन्मदिन है, आपके बेटी का जन्मदिन, बेटी का जन्मदिन, सो ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रॉम योर अनीता अफ्रीक ऑन फ्लैग से। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी के लिए बजा देते हैं अगला गाना आप सभी के नाम, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

साथ ही हैप्पी बर्थडे गुजारते शिवानी नथु ऑफ बेलमार फ्रॉम सोन केशव है डॉटर इन लॉ शिल्पा इन सोन इन लॉ अरविंद एंड दस फैमिली पॉल फैमिली ऑफ बेलमार।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती, RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
2: 103.5.
5: East, West,
2: 96.4.
5: Center,
2: 99.4.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: Time check, it's 10 a.m. ये सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ टीना। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। ये एक ऐसी दोस्ती है जो समय के साथ मजबूत हुई है और कल रात मुकामी और गहरी हो गई। यूरोप डे के मौके पर राजदूत उस्का बेनेडिक ने देश की राजनीतिक और कूटनीतिक हस्तियों को तेलफिया में एकत्र किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र सौंपा गया जो मॉरिशस और ब्रसल्स के बीच सहयोग के शुरुआती कदमों का सबूत है। सरकार ने गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करने पर कड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने सड़क नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी चालक जो फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़े पाया जाएगा उसे पहले की तरह 3 से 6 पॉइंट्स नहीं बल्कि 5 से 10 पॉइंट्स की सजा मिलेगी। ये फैसला उस समय आया है जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग ने नए पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के लागू होने के बाद पहली रिपोर्ट जारी की। मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक दूतावास पोर्टी में खोला जाएगा। यूएई की ओर से दी गई मांग को मॉरिशस ने मंजूरी दे दी है। इसी के तहत अहमद नासिर अल दहमानी को मॉरिशस में यूएई का पहला निवासी राजदूत नियुक्त किया जाएगा। और ईद उल अधा 2026 के लिए आयातित जिंदा मवेशियों का दाम 186 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। ये आज शनिवार 9 मई 2026 से लागू है और ईद के 10 दिन बाद तक लागू रहेगा। लगभग एक हफ्ते बाद अपने नए आंदोलन का नाम बदलने के बाद पोल बेरांजे आधिकारिक रूप से फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस को इस शनिवार लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर समर्थकों को दिन के 2:30 बजे वाक्वा फेनिक्स के नगर पालिका हॉल में एकत्र होने के लिए कहा गया है। FMP में सदस्यता के लिए आवेदन जारी है। और विदेश में अमेरिका की स्पिरिट एयरलाइंस पर एक डिमेंशा पीड़ित बुजुर्ग यात्री को एयरपोर्ट पर असहाय छोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। बुजुर्ग व्यक्ति बाद में रास्ता भटक कर हाईवे पर पहुंच गए जहां कई वाहनों की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में परिवार ने एयरलाइन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। सेल्फी नंबर एक वाकुआ में 60 साल की 60 years old की श्रीमती राधा हावती रामदोनी पैदाइश नाम वो मेड और जो मुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर सफेद नंबर एक वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए थामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Bali Branch, RM2, Radio Musti.

चलिए जी, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। 10:13 हुए हैं, आप जुड़े हैं एम टू रेडियो मस्ती के साथ। ये है बॉली ब्रंच विद मनीष, मैं ऑफकोर्स यहाँ पर साथ निभा रही हूँ आपका टिल 12 बजे। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। वैसे

0: बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. हेलो, प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल स्टाफ ऑफ SSRN हॉस्पिटल, स्पेशली द एम्बुलेंस सेक्शन, लिसनिंग टू हाउ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर. थैंक यू, बॉन कोराज के साथ यू ड्राइव सेफ गाइज. वैसे हमारी जिंदगी तो आपके हाथों में ही है, सो हैव फन.
1: Body Branch RM2 Radio Masti.
0: और यहाँ पर ये गाना स्पेशली डेडिकेट करना चाहती हूँ तो विद्या एंड आंटी बेबी के नाम दो बहनें जो इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. चलिए, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल सैटरडे मॉर्निंग.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Bolly Brunch, RM2, Radio Masti.
2: चलिए हम पहुंच गए हैं वो द फैशन टिप। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वी गॉट हियर सम रियली रियली नाइस सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स जो आपके वार्डरोब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से अगर आप स्टाइलिश मैक्सी ड्रेस पहनना चाहते हैं तो यार गो विद लाइट प्रिंट्स। वैसे ये बहुत ही क्लासी चॉइस होता है। एडेड डेनिम जैकेट विद अ ट्रेंडी टच, आज तो सैटरडे है, यू कैन पेयर इट विद फ्लैट्स और वेजेस और कम्फर्ट के लिए और स्टाइल के लिए टुगेदर ये बहुत ही जचता है। और जो मैंने कहा था ना वाइट स्निकर्स, तो ये ड्रेसेस के साथ भी बहुत अच्छा जाता है। सो सॉफ्ट मेकअप का आप इस्तेमाल करो, यू नो नॉट ज़्यादा आई लाइनर या फिर काजल या फिर टिक्का, ये सब कुछ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ा सा आई लैश डाल दो ना, आई लैश को कर्ल कर लो एंड थोड़ा सा हल्का सा काजल एंड देन वन छोटा सा बिंदी एंड देन वेरी न्यूड कलर का यू नो लिपस्टिक डाल दो एंड देन यू विल फील बेटर, यू विल फील सो रिलैक्स। एंड एक जो मैक्सी ड्रेस के साथ जो आपने स्नीकर

0: यही तो हम चाहते हैं, आप गाड़ी में हो, आप घर में हो, कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी साफ कर रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो, वैसे ही अमेजिंग प्लान होता है हर वीकेंड का यार। थक ही जाते हैं, आधा दिन निकल ही जाता है, एंड देन इट्स लंच टाइम, एंड देन सारा दिन ही वी कैन जस्ट से दैट वी कैन कंप्लेन विद ईच अदर कि यार इतना सारा जो काम है, घर के काम है, उसको समेटे समेटे शाम ही हो जाती है और वीकेंड खत्म हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। या फिर आई वॉन्ट यू टू टेक बेस्ट टाइम आउट ऑफ दिस डे to have a wonderful time with yourself and music also. यहाँ पर जाना बोल रही है कि वो फ्लैग से हैं, अभी सुन रही है, स्वीट स्वीट मैसेज भेज रही है, अभी रेडियो मस्ती को एंजॉय कर रही है। अगला गाना फरीब मूवी से गुज़ आउट टू मेरी बेटी रीमा, जनीता, शेष्टा, अंशिनी, सिल्विया और यूवी कृषि, शिवसरन फैमिली ऑफ फ्लैग। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग्स।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
0: ओके जानू, दिस इज द टाइटल ट्रैक प्रिंग फॉर सिंगार जो कि फ्रांस से साथ निभा रहे। यहाँ पर जोक्स कर रहे हैं सारे हॉस्पिटल स्टाफ, सो कलीग्स जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल मैसेज। आपने याद जो किया, हम भी आपको नहीं भूलेंगे। सारे जो स्टाफ है, सारे जो एसेंशियल सर्विसेज में है, यू नो जो रिसेप्शन में काम करते हैं, जो वार्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी हम डेडिकेट करना चाहते हैं ये अगला गाना। ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक विद अ फुल बीट के साथ। ओके जानू, हियर वी गो।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक दिन के 11 बजे है। एक बार भी इनसे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ तीना। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। अंतर मंत्रालय समिति ने फैसला किया है कि ईद उल अधा 2026 के लिए बीफ का दाम 186 रुपये प्रति किलो तय हुआ है। आयातकों की 220 रुपये की मांग के बावजूद मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि ये रेट आम जनता के फायदे के लिए रखा गया है और ये रेट त्यौहार के 10 दिन बाद तक चलेगा। सरकार ने वादा किया है कि वे पूरी निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी मनमानी न करे। एक ऐसी दोस्ती है जो समय के साथ मजबूत हो गई और कर्रात मुकामी और गहरी हो गई। यूरोप डे के मौके पर अम्बेसडर उस्का बेनेडिक्ट ने देश की राजनीतिक और कूटनीतिक हस्तियों को तेलफिया में एकत्र किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र सौंपा गया जो मॉरिशस और ब्रसल्स के बीच सहयोग की शुरुआती कदमों का सबूत है। सरकारी सेवा मंत्रालय में बदलाव हुआ है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार डॉक्टर धनंजय कावल ने कल 8 मई को तुरंत सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। उनके पास अभी भी 4 साल की सेवा बाकी थी। इस फैसले के बाद शकुंतला देवी गजाधर नौबत को सरकारी सेवा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वे पहले स्थानीय प्रशासन मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही थी। इस जल्दी सेवानिवृत्ति का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ये कदम कुछ दिन पहले जारी सर्कुलर के बाद विवाद के बाद आया। सर्कुलर में सरकारी काम के नए टेलीवर्क नियम और फ्लेक्सिबल आवर्स बताए गए थे। इस दस्तावेज पर डॉक्टर धनंजय कावल का हस्ताक्षर था। दोनों कर्मचारियों के लिए हिजाब पहनने पर कोई साफ नीति नहीं थी। ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन EOC की रिपोर्ट में सामने आया है जो नादरा आमिर और मुशीरा अब्दुल्ला के उनके पूर्व नियोक्ता ENS अफ्रीका वकीलों के कार्यालय के खिलाफ तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट कल 8 मई को प्रकाशित हुई। EOC का कहना है कि दोनों महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ। जून 2025 में हिजाब पहनने के कारण उन्हें निलंबित किया गया और बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने नियोक्ता के आदेश नहीं माने। आयोग ने यह भी बताया कि नाजरा आमिर और मुशीरा अब्दुल्ला ने कोई अनुबंध यानी काम का कागज साइन नहीं किया था, इसलिए चाहे कोई धार्मिक नियम, किसी गाइडलाइन या नौकरी की शर्तों में लिखा हो, बिना काम के कागज के नियोक्ता ये साबित नहीं कर सकता कि ये उनके काम की अनिवार्य शर्त थी। नाजरा अमीर और मुशीरा अब्दुल्ला के वकील इम्तियाज महमूदी ने इसका ऐलान किया। और विदेश में अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। उसने कहा कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमरीकी जहाज़ों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में ये कदम उठाया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। सिर्फ एक नंबर एक वाकुआ में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधा हावती रामदोनी पैदाइशी नाम वुमेद और जमुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर सिर्फ नंबर एक वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए थामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: On NBC Play, NBC Radio.tv.
5: Body Brunch, RM2, Radio Musti.

Party Brunch RM2 Radio Masti. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इन द लास्ट आवर ऑफ योर बॉली ब्रंच। यहाँ पर मनीष मैं आपका साथ मारी है टिल 12 बजे। देन ऑफ कोर्स यू गॉट हियर द होल डे टू एंटरटेन ऑफ कोर्स विद अस हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ट सी आई गेस द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस लुचाई उल्फत ट्यूसडेज मूवीज़।

0: करने वाली धुरंधर मूवी से लिया गया ये गाना रेमिक्स वर्जन। आई होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम आई विल लिसन टू RM2 रेडियो मसी। अगर आप लंच कर रहे हैं तो बन अपेची शुभ आहार गजा टू एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मसी। अभी के लिए हाय मनीष महावी, सब ठीक? कभी धूप कभी हल्की बारिश कैटरबॉर्न में, आई प्लीज रिक्वेस्ट द सॉन्ग दम मारो दम इफ पॉसिबल ऑफ कोर्स। थैंक यू डार्लिंग। हेलो जी संगारो फ्रेंड्स, अगेन ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मसी। हियर वी गो
1: Body Brunch RM2 Radio Masti।
0: ग्यारह बजकर 28 मिनट हुए हैं, दम मरदम चल पड़ा आपके नाम। तो चलिए जी आप एंजॉय करते रहो मौसम को, यूं ही बस उनका लुफ्त उठाते रहो।

0: चलिए हैव अ वंडरफुल सैटरडे आफ्टरनून हम कह सकते हैं कि आप 15 मिनट में आफ्टरनून भी हो जाएगा. देखा वक्त कैसे कट जाता है जब भी ऐसे अच्छे अच्छे गाने चल पड़ते हैं. आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं मनीष माथिल. 12 बजे बस कह सकते हैं कि यार 18 मिनट बाकी हमारा और आपके साथ का
1: Body Brunch, RM2, Radio
0: Natural Girl, Saturday का टाइम है यहाँ पर यूं ही साथ निभाते चलो.

0: बट फॉर यू दिस इज द टैलेंट ट्रैक. अभी के लिए हमारे जाने का समय हो चला है. हर जी हंसनी आ रही है आपके आपके साथ निभाने के लिए. एंड ऑफ कोर्स उनका साथ मैसेजेस द्वारा 549 and 1294 पर भेजिएगा जरूर और निभाते रहिएगा. अभी के लिए हमको इजाजत दीजिए. बाय बाय, टेक केयर.
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: Time check. Din ke 12 baje hai. फिर से सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ तीना। नमस्कार आपको।
7: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे स्थानीय खबरें। सरकार ने गाड़ी चलाते समय फोन इस्तेमाल करने पर कड़ा कदम उठाया है। मंत्री परिषद ने सड़क नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी चालक जो फोन या माइक्रोफोन हाथ में पकड़े पाया जाएगा उसे पहले की तरह 3 से 6 पॉइंट्स नहीं बल्कि 5 से 10 पॉइंट्स की सजा मिलेगी। ये फैसला उस समय आया है जब ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा विभाग ने नए पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के लागू होने के बाद पहली रिपोर्ट जारी की। सरकारी सेवा मंत्रालय में बदलाव हुआ है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार डॉक्टर धनंजय कावल ने कल शुक्रवार 8 मई को तुरंत सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया।

0: किया। उनके पास अभी भी 4 साल की सेवा बाकी थी। इस फैसले के बाद शकुंतला देवी गजाधर नौबत को सरकारी सेवा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वे पहले स्थानीय प्रशासन मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही थी। इस जल्दी सेवानिवृत्ति का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ये कदम कुछ दिन पहले जारी सर्कुलर के विवाद के बाद आया। सर्कुलर में सरकारी काम के नए टेलीवर्क नियम और फ्लेक्सिबल आवर्स बताए गए थे। इस दस्तावेज पर डॉक्टर धनंजय कावल का हस्ताक्षर था। अब सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकलिंग की बात करें। मॉरिशस में प्लास्टिक रिसाइकलिंग में विशेषज्ञ कंपनी DKD प्लास्टिक पाइप्स आज इलाकाई स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि उसने 20 से अधिक वर्षों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की है। ये पहल इंडियन ओशन कमीशन के एक्सप्लोर प्रोजेक्ट के तहत समर्थित है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना है। इस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए कॉल फॉर प्रोजेक्ट्स में सैम्बिया में एक फील्ड विजिट आयोजित की गई, ताकि प्रतिभागी रिसाइकलिंग प्रोडक्शन लाइन्स को नज़दीक से देख सके। लगभग एक हफ्ते बाद अपने नए आंदोलन का नाम बदलने के बाद पुल बिरांजे आधिकारिक रूप से फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस को इस शनिवार लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर समर्थकों को दिन के 2:30 बजे वाकुआ फिनिक्स के नगर पालिका हॉल में एकत्र होने के लिए कहा गया है। FMP में सदस्यता के लिए आवेदन जारी है। विदेश में अमरीका की स्पिरिट एयरलाइंस पर एक डिमेंशिया पीड़ित बुजुर्ग यात्री को एयरपोर्ट पर असहाय छोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। बुजुर्ग व्यक्ति बाद में रास्ता भटक कर हाईवे पर पहुंच गए, जहां कई वाहनों की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में परिवार ने एयरलाइन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। सुफिकुंजी नंबर एक वाकुआ में 60 साल की 60 years old की श्रीमती राधा हावती रामदनी पैदाइश नाम वूमेड जो मुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर सुफिकुंजी नंबर एक वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए थॉम अमेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Love Lounge.
2: RM2.
3: Radio Musty.
2: Love Lounge.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Ok, alors, qui suis-je? Vous avez 15 secondes pour deviner. Plateforme, streaming, cinéma, série, sport, Bollywood. Ok, autre indice. On peut streamer où on veut, quand on veut. Vous l'avez?
3: Canal Plus.
2: Canal Plus, c'est plus que vous ne l'imaginez. La plateforme qui réunit cinéma, série, sport, telenovelas, Bollywood, mais aussi HBO, Netflix, le tout au même endroit.
4: Offre soumise à condition à Maurice. Modalité sur canalplus.com.
0: RM2
1: Radio Musty.
5: Love Lounge. Dear Ishq Mohammed. Love Lounge.
6: Welcome on Radio Musty. Welcome in the world of love. Bada bachkar, atmanat ho chala hai. It's a warm welcome to everyone in Mauritius. And even abroad se bhi bahut sara pyar aata hai. So it's the start of Love Lounge. Shuruaat ho gayi hai. Aur aaj bhi mulaqat hone wali hai. रंगीन हम बनाएंगे इस सफ़र को इन आज का लव लाउंज और हंसनी का साथ बिल्कुल हम तो है तैयार आप लोगों का साथ निभाने के लिए आई विल बी हियर हम साथ साथ रहेंगे अप टिल 2 PM सो आप लोग कैसे हो रेडी हो कि सब ठीक है ऑल इज़ वेल जैसे हम कहते हैं ऑल इज़ वेल ऑन योर साइड और अगर ठीक नहीं है तो अभी ठीक बनाएंगे वी हैव गट अ रीज़न प्यार के साथ टू कनेक्ट आवर सेल्व्स राइट सो स्पेशल थैंक यू टू आवर लवली मनीष मां शी वाज़ हियर फॉर आज का बॉली ब्रंच और अब हम तो आए हैं टू कंटिन्यू द म्यूजिकल जर्नी आप लोगों के लिए पेश हम करेंगे कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स क्योंकि ठहरे हुए हैं इन द वर्ल्ड ऑफ लव राइट सो कुछ प्यार भरे गाने कुछ फीलिंग्स के साथ हम जुड़ जाएंगे जो आप लोग हमें बताएंगे कि आज दिल कैसा है दिल का हाल कैसा है दिल क्या कुछ कहना चाहता है ऑल विल बी ऑन 549-1294 मैसेजेस द्वारा आप अपने दिल की बातें बयां कर सकेंगे सो वी आर हियर टू कनेक्ट यू विद द बेस्ट ऑफ romantic songs melodies that will be a delightful safar jahan par hum saath nibhane wale hain so big hello to everyone having lunch bon appetit sabhi ko enjoy lunch enjoy khana peena and enjoy with music aur aaj to saturday hai kai log bazaar ja rahe hain अपने वेजी बास्केट को भरने के लिए हफ्ते भर के लिए शॉपिंग बस आपको करने हैं हफ्ते भर के लिए आप बिजी रहते हो तो आज एक ऐसा मौका मिला है हैविंग सम फ्री टाइम सो एंजॉय इट विद योर किड्स विद योर फैमिली और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम ट्यूशंस हैव सम रेस्ट और अभी जो जा रही हैं आप सभी को बों को खाश सो ऑल सेट फॉर अ ब्यूटिफुल डे मस्ती हम करते रहेंगे क्योंकि आप तो ठहरे हो इस समय ऑन द वे ऑफ रेडियो मस्ती
5: Love Lounge.
1: RM2.
7: Radio Musty.
5: Love Lounge.

यहाँ पर लेटेस्ट मूवी है दो दीवाने शहर में, और देखा जाए तो प्यारे के इस तरह पर हम भी तो दीवाने बन गए हैं ना, राइट? सो ये आपके लिए चुलबुला है विमल जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। कटबोन के रहने वाले विमल बुलक का वार्म वेलकम ऑन रेडियो मस्ती। और ये जो लवली ट्रैक आया है ना, वो आपके लिए ज़रूर चल जाएगा, फॉर योर लवली एंजल डॉटर भव्य किरण के लिए एंड फॉर योर गॉर्जियस वाइफी प्रीति के लिए और आपके इस पूरे परिवार के लिए। बस हम ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे टू विश एवरीवन अ वेरी नाइस वीकेंड।

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: तन्हा रहना तो सीख लिया है हमने, पर खुश ना कभी रह पाएंगे। तेरी दूरी तो फिर भी सह लेती हूँ मैं, तेरी दूरी तो फिर भी सह लेती हूँ, लेकिन ये दिल मोहब्बत के बिन ना जी पाएंगे। जिंदगी की कहानी अधूरी सी है, दिल में दर्द की दास्तान भरी है, गम के साए में साथ छोड़ा है, गम के साए ने साथ छोड़ा है, दर्द के साए ने हर पल मोड़ा है। ये था एक वंडरफुल सॉन्ग हमने सुना है इन द ग्रेट वॉइस ऑफ आदित्य नारायण। दैट वॉज वेरी नाइस, क्योंकि हम तो मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी ना रहेंगे तो कैसे जिएंगे, हाँ। तो इसीलिए वी कॉल इट लाइफ, ज़िंदगी जहाँ पर हम सांस लेते हैं। तो अगर है कोई ऐसा शख्स जिनकी वजह से आप प्यार के साथ सांस लेते हो, ज़िंदगी को आप ज़िंदगी कहलाते हो, सो वाई नॉट एक मैसेज हो जाए उनके लिए ऑन 5499-1294। दिल कुछ कहना चाहता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कभी दिल को समझा लेते हैं और कभी दिल हमको समझा लेता है। ये कनेक्शन बस जारी हम रखेंगे ऑन रेडियो मस्ती। दिस इज़ आवर लव लाउंज, सेलिब्रेट कर रहे सैटरडे को हमारे साथ ऑन द रेडियो टीम ऑन रेडियो मस्ती फॉर आज का लव लाउंज। दीजिए हमारा साथ, हंसनी इज विद यू, साथ हम रहेंगे 2 बजे तक। आई एम वेटिंग, आपका इंतजार है 5499-1294 पर।

0: उसे कभी ये पता ही नहीं चला कि कोई चुपके से उनसे बेपनाह चाहती है। वो अपनी दुनिया में तो मुस्कुरा कर जी रहा है और मैं उसकी यादों में खामोशी से जीती रही। ना उसे कभी मुड़कर देखा, ना मैंने कभी शिकायत की। बस एक सच्चे दिल से उनको चाहा, बस एक सच दिल में सदा जिंदा रहा कि मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। This is a reason, a strong reason to stay in love. ये है आज का Love Lounge on our Radio Musti.
1: Love Lounge.
2: RM2.
3: Radio Musti.
1: Love Lounge.

0: Love Lounge. Yeah, Ishq Mohabbat. Love Lounge.
1: That was indeed emotions, right? कुछ गाने ऐसे होते हैं जो फील किया जाता है, कुछ गाने गाए तो नहीं जाते, बस हम महसूस कर लेते हैं हर एक लव्स को दिल की गहराइयों से चलाया है हमने. Really hope you enjoyed. Lots of love and emotions. कुछ रिश्तों के लिए प्यार कभी खत्म नहीं होता, कुछ रिश्तों के लिए प्यार कभी कम नहीं होता. सो उन्हीं रिश्तों के लिए बस ये शो है जो कायम हम रखेंगे टू मेक इट इवन मोर स्पेशल. सो वी आर हियर लेकर अब कुछ आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन. सब एक बिग हेलो टू कुशल संभू. थैंक यू फॉर लिसनिंग, कनेक्टिंग विद आज का लव लाउंज. जो गाना आप सुनना चाहेंगे माय डियर, आई विल ट्राई इट फॉर यू. अगर नहीं तो अक्षय कुमार वाला गाना ठीक रहेगा ना आपके लिए, फॉर योर लवली वाइफ कोमल के लिए, फॉर कृषय एंड कियांश के लिए एंड मम्मा के लिए भी. रियली होप शी इज फाइन एंड सभी संभू परिवार के लिए भी गाना चल जाएगा. Hi Radio Musti, hello Hansini, hello, wishing you a great weekend, thank you, same to you. Good collection of songs, we are actually in Rodrigues Island and at Crèvecoeur in Rodrigues, okay, missing Mauritius very much. This is coming from Rambodoy families, jo yahan par connected hai all the way from Rodrigues Island. A big hello to you and it's a pleasure to welcome you in Mauritius. Really hope you will be back soon. Aur agla jo gana hai wo definitely aap sab ke liye. Wishing my friend Karuna Rajkumar a very happy birthday from a friend jo hamesha saath dete rehte hain. Okay, wo ek company mein kaam karti hai aur Karuna ji, aaj aapka special date, right? Happy wala birthday aapko. God bless you and lots of good wishes coming from Hansini and all the team. नमस्ते हंसरी जी, नमस्ते, कैसे आप हो? मैं तो ठीक हूँ, एकदम मस्त. अच्छा गाना है एंड यू हैव अ रिक्वेस्ट नोटबुक से. ओके जी, अगर इससे में आपकी खुशी है सो व्हाई नॉट. ये है रोशनी जी फ्रॉम कैटबोन, हैविंग अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. हम मानते हैं अगर किसी बात में किसी की खुशी है, किसी की मुस्कुराहट छुपी हुई है, सो व्हाई नॉट. अगर ये हमारे बस में है चलाने के लिए एंड वी कैन मेक इट हैपन एक्चुअली, सो हम कोशिश कर सकते हैं उस खास को मुस्कुराहट देने के लिए. सो वी आर हियर लेकर दिस वंडरफुल रोमांटिक सॉन्ग्स दैट विल बी अगेन प्यार इश्क मोहब्बत वाला फील.

0: कार्टून ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार MBC 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन MBC 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: वेलकम टू रेडियो मस्ती The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musty feels a musty.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: And WQLEA bring you a special souvenir from the 90s era. Love Lounge में आपका वेलकम है. अगर अभी आपने ऑन कर लिया है ना आपका रेडियो मस्ती, कुछ रिलैक्स करवाना चाहते हो आप, यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्फ और यू वांट टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ लव, सो व्हाई नॉट, बिल्कुल सही क्वेश्चन है टू एंजॉय दिस म्यूजिकल जर्नी. A warm welcome to everyone. Have a safe drive. अगर इस समय सफर आप कर रहे हो, going somewhere, so be cautious and enjoy the musical show. Up till 2 p.m. यहाँ हंसनी के साथ, just to enjoy the best of romantic songs. प्यार है ना, वफाई है, कुछ यादें हैं. 7 years of back on Radio Musty, keep enjoying it. और ये आपके लिए है कुशल जी. Really hope you will enjoy.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: Good afternoon, everyone. Check your time. It's already 1 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ. आपको नमस्कार पूजा.
4: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. बात सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी और रिसाइकलिंग पर. मॉरिशस में DKD प्लास्टिक पाइप्स नामक कंपनी जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में विशेषज्ञ है, अब अपनी 20 वर्षों से अधिक की विकसित विशेषज्ञता के कारण इलाकाई स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है. ये पहल इंडियन ओशन कमीशन IOC परियोजना के तहत समर्थित है, जिसका उद्देश्य इलाके में प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध लड़ना है. इस परियोजना के तहत प्रतिभागियों को सैंपिया में रिसाइकलिंग उत्पादन लाइनों का अवलोकन करने के लिए एक साइट विजिट का आयोजन किया गया. ये मित्रता समय के साथ मजबूत हुई है. कल रात तिल्फेमोका में आयोजित यूरोप दिवस के अवसर पर राजदूत उसको बेनेडिक के साथ देश के राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव एकत्रित हुए. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन

0: गुलामों को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया गया जो मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के पहले कदमों की गवाही है। नवाचार और प्रौद्योगिकी अमरीकी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बयान क्रेग हाल्डमायर संयुक्त मतलब अमेरिका के दूतावास में कार्यवाहक श्रॉजे डाफेयर ने बुधवार को फ्लोरियल में आयोजित एक राउंड टेबल के अवसर पर दिया। ये पहल इस वर्ष अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। विदेश में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को दो ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकरों को निशाना बनाते हुए उनके चिमनी पर हथियारों से हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो मध्य पूर्व में सैन्य संचालन की निगरानी करता है ने एक वीडियो जारी किया जो उनके अनुसार दिखाता है कि तेल टैंकर सिस्टा फ्री और सेवदा को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा है कि ये जहाज अमरीकी द्वारा ईरानी बंदरगाह पर लगाया गया नाकाबंदी उल्लंघन कर रहे थे। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Solferino number 1 va quoi mais Solferino number 1 va quoi mais 60 saal ki 60 years old Shrimati Radha Houti Ramdhoni पैदाशी नाम उमेद और जिन्हें लोग मुन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम चार बजे इनके मकान नैसुलवीनो नंबर 1 वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमामेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोते अरूज में 73 साल के 73 years old श्री रमेश्वर गिरधारी जिन्हें लोग रमेश बाजौ नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रॉयल रोड त्यागूज से उठाकर बामौसम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: RM2 Radio Masti Love Lounge
3: RM2
4: Radio Masti
2: Love Lounge
5: MBC Astia da Oulame. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get une chaîne en direct, écoute une radio préférée, découvrir films, séries et si tu parles de journal télévisé, n'importe quoi tu étais. Download MBC Play sur App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
6: Welcome to RM2 Radio Musty.
4: Radio Musty.
7: Hit music only.
4: Feels a musty.

0: Love Lounge, Pyar Ishq Mohabbat Love Lounge.
1: Yes, again, a Pyar Ishq Wala Feel on Radio Masti. This is a Love Lounge celebrating love. और ये जो प्यार आता है ना, जब आता है तो बेशुमार ही आता है. Really pray. हम दिल से यही प्रार्थनाएं करते हैं कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में प्यार है वो सच्चा बन के रहे, always and forever. We are already in the second hour of the show and that's beautiful to have so much of love. और प्यार भरे गाने जब चलते हैं so it's always like a special. और प्यार के साथ ही आप सुन रहे हो, enjoy कर रहे हो, messages पहुँचा रहे हो जहाँ पर दिल कुछ कहना चाहता है. कभी ऐसा होता है कि जो बातें हैं वो दिल में रह जाता है और बात ऐसे की ऐसी रह जाती है. तो बात कैसे आगे बढ़ेगी अगर आप दिल की बातें बयान ना कर सकेंगे तो कैसा चलेगा. इसलिए वी ब्रिंग अ शो जहाँ पर प्यार के साथ आप जुड़ जाते हो, यू गो विद द फ्लो एंड बाहर आते हैं कुछ ऐसे फीलिंग्स जो दब जाते हैं. We are here to listen to you, aapko sunne ke liye, aapke messages ko padhne ke liye on a 5491294. We have it beautiful for all the lovers. Mujhe pata hai, aap enjoy karne wale ho. The great duet of Rahat Fateh Ali Khan and Tulsi Kumar. Enjoy.

0: RM2 Radio Musty. The lights go black. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: और यहाँ पर मस्ती के साथ प्यार भी तो है. वी आर कनेक्टेड विद आज का लव लाउंज, राइट. और ये आपके लिए चल पड़ा है मध्या जी, मध्या लचिया, जो इस समय रिश्मा फ्लक्स से कनेक्टेड है टू रेडियो मस्ती, एंजॉयिंग द शो एंड हैविंग अ प्लेजेंट सैटरडे हमारे साथ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुगेदर. और बेशक एक गाना तो बनता है ना आपके लिए एंड फॉर ऑल योर फैमिलीज, लचिया फैमिलीज के लिए एंड स्पेशली आपके लिए जो हमेशा साथ आप निभाती हों. फ्रॉम योर लवली डॉटर पद्मिनी, जो हमारी एक स्वीट सहेली है और MBC में काम करती है इन द IT डिपार्टमेंट. सो सभी परिवार जो आए हुए हैं टू कन्वे द लव टू एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम. मध्या जी, ये गाना स्पेशली आपके लिए है.

0: लव लाउंज प्यार इश्क मोहब्बत लव लाउंज
1: ये तो है जो रब डिसाइड करता है ना, बस वही होता है क्योंकि किस्मत का वो जो दौर है वो हमारे हाथों पे तो नहीं होता है, वो सब डिसाइड कर लेते हैं। सो जो भी होगा वही डिसाइड करेंगे, कब होगा वही डिसाइड करेंगे। सो जो भी तकलीफ है उन्हीं पर हम छोड़ लेते हैं। आज नो स्ट्रेस, आज हम सिर्फ प्यार की बातें करेंगे। वी आर हियर टू हैव अ जॉली गुड जर्नी आपके साथ। वी आर हियर टू एंजॉय आज का लव लाउंज। वी हैव योर मैसेजेस नाउ, कुछ प्यार भरे मैसेजेस हो जाए। लेट्स गो टू सम आउट एंड वेलकमिंग वेदिता हमारे साथ। हेलो डियर, वेलकम। आज भाभी जेराल्डिन का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू जेराल्डिन, विश हर ऑल द हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स एंड गुड हेल्थ फॉर हर। Actually, abhi, you lost your mama already 2 months. It's really hard. Bilkul. Mama jo hai, aapki jaan hai na. Mama hai, to jahan hai. Missing your mama so much. Lots of love and blessings coming from your mama. Jo is samay heaven se hai. And saying hello and blessings aapke liye wo bheja hi hai. We have Kolichan families jo yahan par connected hai. Thank you Vedita for sharing your feelings and your love on Radio Masti. So nice to listen to Radio Masti, enjoying long drive from Cambridge to Croydon for a housewarming celebration at a friend place. That's wow. We have lots of parivar jo jude hue hai all the way from United Kingdom to Mauritius. It's a pleasure to welcome everyone. We have it for Simla, Diksha, Pritesh, Nikhil and Aisha, jo UK se hai, enjoying a family time. Hey, wow, that's gorgeous. Thank you for sharing your picture as well. So lovely, gorgeous. Simla, Diksha and Aisha, teen pariyan, just looking wow. God bless you, enjoy family time and enjoy with Radio Masti. Agla jo gana hai, wo definitely aapke liye chal jayega. We have Varsha Gurun Singh from Australia. Hey, it's a warm welcome to you too. Aaj to ghumne ka plan ban gaya hai with the Radio Masti, jahan par Hansini ka saath hai. Having a pleasant time. The songs are just fabulous. Thank you, Varsha ji. Yahan par gana hai aapke pati Vimal ke liye, for kids Saniya, Veer, aapke mama, aapke bhai hai Ashwin, bhabhi Devina, nephew Lashnav, and Rakshit, aur sabhi Radio Masti team ke liye. Have a wonderful day, you too. और ऑस्ट्रेलिया से प्यार जो आया है ना, कुछ और स्पेशल हो जाएगा हम सब के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग कलेक्शंस। ये आपके लिए है मिस्टर बाडो अकबरेसी, कयाक से कनेक्टेड आप हो, एंजॉयिंग द वेरी नाइस प्रोग्राम एंड वेरी नाइस सॉन्ग्स। तो हमने सोचा अगर ये वाला गाना चल जाएगा, दैट विल बी इवन मोर स्पेशल, कुछ और खास बन जाएगा आज का फीलिंग विद रेडियो टीम, विद आज का लव लाउंज। सेलिब्रेट करें लव को अटिल टू बी।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: the latest news, and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a Musty.
2: MBC, Astia da Oulami. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get une chaîne en direct, écoute une radio préférée, découvrir films, séries et si tu parles de journal télévisé, n'importe quoi tu étais. Download MBC Play au App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
3: Débat climat peut commencer. Banzenes qui représente 16 collèges à travers Maurice fin paré pour faire tendre la voie au changement climatique et son impact. Qui a une vision pour l'avenir? Débat climat est l'initiative groupe MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration de Dr. François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 9 mai à partir de 8h30 à soir pour premier épisode de MBCN et MBCSAT.
0: RM2, Radio Musty.
4: Hit music only.
1: Radio Musty feels a musty.
5: Love Lounge, Pyar, Ishq, Mohabbat. Love Lounge.
6: आशिकी के इस जहान में हम सब आशिक बन गए हैं थैंक्स टू आवर लव लाउंज सेलिब्रेटिंग लव अराउंड मॉरिशस एंड इवन अब्रॉड से भी हमारे परिवार जुड़ गए हैं बिग बिग हेलो टू एवरीवन लिसनिंग टू लव लाउंज और जो हमारा कलेक्शन है बस दिल को भा रहा है वेरी नाइस और ये तो हमारा हौसला बन जाता है जब हमको पता चलता है कि हमारे गाने प्यार को बढ़ा रहा है दैट्स अ प्लस पॉइंट और बस We get happy, दिल खुश होता है एक सुकून सा महसूस होता है सो जहाँ पर भी साथ जारी हो गया है इट्स अ वार्म वेलकम और चलेंगे कनाडा एक बार फिर से घूमना फिरना हो रहा है यस हम बढ़ेंगे कनाडा की ओर जहाँ परी ने बाबू शोना को याद किया है और बस कह रही है कुछ सदा दूर रहो गम की परछाइयों से सामना ना हो कभी तन्हाइयों से हर अरमान हर ख्वाब आपका बस पूरा हो हर अरमान हर ख्वाब आपका पूरा हो यही दुआ है दिल की गहराइयों से मांगी थी दुआ मैंने रब से देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे मिला दिया रब ने तुमको हमसे और कहा संभालो यही है अनमोल सबसे तो ये गाना पेश है आप दोनों के लिए ताकि जो बंधन है ना वो कुछ और गहरा हो जाए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय विद रेडियो मस्ती प्यार किया है तो प्यार को निभा लीजिए

बेस्ट और रोमांटिक सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती फॉर लव लाउंज, ये आपके लिए है विजया जी, विजया जो बकवास से इस समय कनेक्टेड है टू एंजॉय द बेस्ट और रोमांटिक सॉन्ग्स। थैंक यू ये आपके लिए और आपके पति आतिश के लिए फॉर डॉटर समेरा एंड ऑल द फैमिलीज रिजाइडिंग एट बकवा लिसनिंग टू अस। चलिए इसी के साथ गुड बाय कहने का टाइम आ गया है और आज का लव लाउंज तो बहुत ही खास रहा आपके साथ। अभी ठीक 2 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद आ रही है परी लेकर आज का प्लग एंड प्ले शो, जबकि मुलाकात तो जल्द ही होगी हमारी और आपकी कल सेम टाइम मिलेंगे। कल तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ वंडरफुल डे।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti, the latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti,
4: feel the Masti.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरें लेकर स्टूडियो में आ गई है पूजा. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार. मॉरिशस में DKD प्लास्टिक पाइप्स नामक कंपनी, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में विशेषज्ञ है, अब कंपनी 20 वर्षों से अधिक की विकसित विशेषज्ञता के कारण इलाकाई स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है. ये पहल इंडियन ओशन कमीशन IOC परियोजना के तहत समर्थित है, जिसका उद्देश्य इलाके में प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध लड़ना है. इस परियोजना के तहत प्रतिभागियों ने सैंपिया में रिसाइकलिंग उत्पादन लाइनों का अवलोकन करने के लिए एक साइट विजिट में भाग लिया. तेलफेमुका में कल यूरोप डे के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया. राजदूत उस्का बेनेडिक के साथ देश की राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव उपस्थित रहे. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र भेंट किया गया, जो मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के पहले कदमों की गवाही है. नवाचार और प्रौद्योगिकी अमरीकी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये बात क्रेग हार्बमायर, अमेरिका के दूतावास में कार्यवाहक सौजे डाफेया ने बुधवार को फ्लोरियाल में आयोजित एक राउंड टेबल के अवसर पर कहा. ये पहल इस वर्ष अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के अवसर के तहत आयोजित की गई. विदेश में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को 2 ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकरों को निशाना बनाते हुए उनके चिमनी पर हथियारों से हमला किया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जो मध्य पूर्व में सैन्य संचालन की निगरानी करता है, ने एक वीडियो जारी किया है, जो उनके अनुसार दिखाता है कि तेल टैंकर C-3 और सेवदा को निशाना बना रहा था. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार. सोल्फेरिनो नंबर 1 वाक्वा में 60 साल की 60 इयर्स ओल्ड श्रीमती राधावती रामधनी पैदाशी नाम हुमैद और जिन्हें लोग मून नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है. की अर्थी आज शाम चार बजे इनके मकान सोल्फेरिनो नंबर 1 वाक्वा से उठाकर थॉमा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टू डेट 4 PM. रॉयल रोड तेहूज में 73 साल की 73 इयर्स ओल्ड श्री रमेश्वर गिरधारी, जिन्हें लोग रमेश बाजौ नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रॉयल रोड तेहूज से उठाकर बुआ मौशां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. और आवेन्यू पांचुस्तन ने रोज हिल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री धर्म जय भवानीदीन जिन्हें लोग किशन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान आवेन्यू पांचुस्तन ने रोज हिल से उठाकर कोदेगद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. Plug and play.
4: RM2
3: Radio Musty.
0: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2 Radio Musti.
2: So well friends, it's time for your plug and play. 2:09 हो गए हैं Saturday afternoon. A big hello हमारे सभी dear listeners को. And finally आ गया है weekend का सबसे chilled out, full on मस्ती वाला time. So well friends, मैं हूँ परी आपके साथ. And it's time for your plug and play right here on RM2 Radio Musti. जहाँ पर stress को देते हैं break और music को करते हैं full volume पर play. And I do hope that आज का ये Saturday एकदम मस्त बीत रहा है. चलिए दोस्तों, सैटरडे आफ्टरनून है तो यहाँ पर होने वाली है सिर्फ हैप्पी वाइब्स. हिट सॉन्ग्स होंगे, डेडिकेशंस होंगे और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी. सो वेर एवर यू आर ड्राइविंग, चिलिंग एट होम, ऑफिस पर फंसे हुए हैं या फिर बीच पर एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, आपके सैटरडे आफ्टरनून को हम बनाने वाले हैं फुल ऑन स्पेशल. सो मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM. गुड म्यूजिक एंड ऑफकोर्स आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. So, यहाँ पर we have some wonderful singers, be it Kunal Ganjawala, be it KK, या फिर शान, या फिर विशाल मिश्रा, सब कुछ मिलने वाला है आपको, because best mix of music लेकर आए हैं आपके लिए. यह है आपका अपना RM2 Radio मस्ती. तो चलिए दोस्तों, अगर साथ दे रहे हैं आप भी, so wishing you a happy, happy Saturday, a happy weekend. Enjoy this one.

Radio Mesti in the mix. Radio Mesti feels a Mesti in the mix.

0: Plug and play.
1: RM2 Radio Musti.
2: एंड दैट सॉन्ग्स कुछ स्पेशल गाने जो इस वीकेंड पर स्पेशल फील देते हैं. ये गाना तो ऑलवेज हिट्स डिफरेंटली ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून. वैसे वीकेंड का सिंपल रूल है दोस्तों कि कम टेंशन लेना है और ज़्यादा गानों को सुनना है. आज के लिए तो बस हम लेकर आई हैं आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल बॉलीवुड हिट्स, रेट्रो वाइब्स हो या फिर डांस नंबर्स या फिर थोड़े से इमोशनल ट्रैक, सब कुछ होने वाला है. बिकॉज दिल है तो इमोशन है और इमोशन है तो फिर गाना तो मांगता है. अभी के लिए दोस्तों मैं हूं परी आपके साथ. और अगर आप भी किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स, पार्टनर, क्रश या फिर खुद के लिए, सो बस सेंड मी द मैसेज राइट अवे ऑन 5499 1294, जहां पर आपके दिल का हाल, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर. वैसे विजया जी कह रही है कि मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब इमरान हाशमी का गाना आए. कहते हैं ना, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी के गाने एक तरफ. सो वेल विजया जी, थैंक यू सो मच. अभी के लिए जो नेक्स्ट ट्रैक होगा डेडिकेट करेंगे फॉर योर हस्बैंड आतिश, आपकी बेटी समायरा, एंड स्पेशली फॉर यू विजया जी. साथ दे रही है वाकवा से. सो हैव अ वंडरफुल वंडरफुल सैटरडे आफ्टरनून. साथ ही यहाँ पर शिखा हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप भी, और कहते हैं व्हाट लवली सॉन्ग्स, मैं भी तो प्लग एंड प्ले कर रही हूँ रेडियो मस्ती के साथ. ये हुई ना बात, यही तो हम चाहते हैं. सो हैप्पी सैटरडे आपको भी डियर, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. यहाँ पर अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, और कहते हैं गाना हो जाए फॉर डियरेस्ट डियरेस्ट पूनम, आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. साथ ही यहाँ पर शशि जी आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. सो हैप्पी वीकेंड आपको, थैंक यू फॉर योर गुड गुड विशेज. एंड अपकमिंग नेक्स्ट गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम. टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन, म्यूजिक ही काफी है दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए. फ्रॉम द फिल्म आशिकी वी हैव दिस एवरग्रीन ट्रैक. कुमार सानू और राधा पौडवाल की आवाजें गूंज रही है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Plug and play.
1: RM2 Radio Masti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, सैटरडे आफ्टरनून है, मैं हूँ परी आपके साथ, और सैटरडे आफ्टरनून आर मेड फॉर ओनली थ्री थिंग्स बेसिकली, गुड फूड, गुड मूड एंड गुड म्यूजिक. सो अगर आपका वीकेंड अभी तक स्लो चल रहा है, डू नॉट वरी, प्लग एंड प्ले है ना एनर्जी बूस्ट देने के लिए. सो हम तो यहाँ पर लेकर आए हैं गुड म्यूजिक एंड गुड एनर्जी. सो नेक्स्ट ट्रैक, इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे सभी साथियों के लिए, सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. वी ऑल्सो हैव कुमार देविचरण एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम, साथ में अपना गिटार भी बजा रहे हैं, गानों को एंजॉय कर रहे हैं ऑन फुल वॉल्यूम, और याद कर रहे हैं अपने डियरेस्ट पापा को, उनके नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन. सो मिस्टर श्याम देविचरण पे बेसे योर डियरेस्ट सन डेडिकेटिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग आपके नाम, साथ देने के लिए शुक्रिया, एंड आपको आपके परिवार को हैप्पी वीकेंड. और चलिए कहते हैं दैट गाने तो है लाजवाब, ऐसे में जो अगला गाना हो वो हमारे नाम भी चला दीजिए. हमारी प्यारी सी रोशनी ये साथ दे रही हैं आप, बिल्कुल जी, चलाएंगे आपके नाम भी, और सनी सनी सी इस आफ्टरनून को बनाएंगे खास एंड स्पेशल आपके लिए. ललिता जीतन आप भी एंजॉय कर रही हैं, कहती हैं तो जा रही हूँ शॉपिंग, फ्लैग जा रही हूँ और ड्राइव कर रही हूँ लिसनिंग टू लवली सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच. याद कर रही हैं सभी परिवार को, सरोज, वीना, कुमारी, गीता, रतन, साथ में हैं ज्ञानती और दो भाई संजय एंड विजय, सभी जीतन परिवार हमारा साथ दे रहे हैं. सो गाना होगा आपके नाम, वी ऑल्सो हैव भगवत विद देसी, एंड विदाउट फॉरगेटिंग योर डियरेस्ट अनुषा, उनके नाम भी होगा एक स्वीट सा गाना. सो एवरीवन कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ, दिस वन गोस आउट फॉर यू.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Plug and play.
1: RM2 Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों, सैटरडे आफ्टरनून है और सैटरडे होता है फैमिली टाइम भी. मंडे टू फ्राइडे इट्स सो क्विक कि पता ही नहीं चलता काम की भाग दौड़ में दिन कब खत्म हो जाते हैं. लेकिन वीकेंड जब आता है तब तो वो मौका मिलता है कि आप फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके. एंड यहाँ पर वी हैव अ स्वीट फैमिली जो हमारे साथ जुड़ी हुई है. माई डियर फ्रेंड यानीता, आपके लिए जो अगला गाना है इसे हम प्ले कर रहे हैं, इक्वली गोज आउट फॉर टू लवली एंजल्स, प्रीशा एंड यवनी.

0: और साथ ही विमल भाई आपके नाम भी होगा अगला गाना, सभी पंचाल एंड राजपति परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल सैटरडे आफ्टरनून, साथ देते रहिए ऐसे ही और कीप मेकिंग सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। मुलाकात तो होगी जल्द ले, और तब तक के लिए भी कुछ प्यारे गाने आपके नाम हम चला रहे हैं राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अविनाश, साथ दे रहे हैं आप, सो थैंक यू जी। अगला गाना डेडिकेट करेंगे आपके नाम एंड हैप्पी सैटरडे आपको भी। शिखा आपसे साथ दे रही हैं और कहती हैं दैट फॉरगॉट टू मेंशन आपकी ममा शीला जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, उनके लिए भी स्पेशल विशेज एंड स्पेशल डेडिकेशन, सो अगला गाना होगा उनके नाम। साथ ही यहाँ पर कविता हमारा साथ दे रही हैं आप, सो आपको भी विश कर रही हैं हैप्पी सैटरडे। इस वक्त जा रही हैं परिवार के साथ टू स्पेंड सम वंडरफुल टाइम एट द सी साइड, सो मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज और हमारे साथ जुड़े रहिए, गानों को सुनते रहिए, मैसेजेस डेडिकेशंस हम तक पहुँचाते रहिए। साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर। मैं हूँ परी आपके साथ, इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
7: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। सड़क पर आपकी सुरक्षा एक छोटी सी चूक से खतरे में पड़ सकती है और कई बार ये चूक होती है आपके टायरों की हालत को नज़रअंदाज करने से। घी से हुए टायर, कम पकड़, लंबी ब्रेकिंग दूरी और एक पल में हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रही है, टायरों की नियमित जांच सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि सड़क पर सुरक्षा रहने की ज़रूरत है। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय की सरपरस्ती में नेशनल वुमेन्स काउंसिल द्वारा रेजी में आयोजित एक समारोह में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नवामारी ने फंड के प्रबंधन में पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया और महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण के विकास की आवश्यकता पर भी बात की। इस समारोह में महिला संगठनों और इलाकाई समितियों को अनुदान प्रदान किया गया और इसके अलावा शी क्रिएट्स नामक प्रतियोगिता की विजेता महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया। और कल रात तेलफिया मुक्का में यूरोप दिवस का आयोजन किया गया। अवसर पर राजदूत उसका बेनेडिक के साथ देश के राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को 56 साल पुराना एक प्रतीकात्मक चित्र भी भेंट किया गया, जो मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के पहले कदमों की गवाही है। विदेश में भारत में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कई नेताओं को की मौजूदगी में बंगला भाषा में शपथ ली और वहां दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना उनके लिए गर्व की बात रही। और आज आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह

0: के साक्षी बनते हुए वहाँ अपने संस्थापक पुरखों के सपनों को साकार होते वहाँ के लोग देख रहे हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोते अरूज में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्री रमेश्वर गिरधारी, जिन्हें लोग रमेश बाजौ नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रॉयल रोते अरूज से उठाकर बुआ मौसा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरात 9:30 AM। एवेन्यू पैंचू स्टैनले रॉज हिल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री धर्म जय भवानी दीन, जिन्हें लोग किशन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके मकान एवेन्यू पैंचू स्टैनले रॉज हिल से उठाकर कोदेगौद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद, श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगुत्रोय की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में इनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर दिव्या की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। नंबर 9 रू डे ला रेनेसांस, नंबर 59 120 फ्रांस में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी, जिन्हें लोग अनीता नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले लिबेटो वाकुआ की रहने वाली थी। इनकी अर्थी सोमवार को दिन के 1:45 बजे इनके मकान नंबर 9 रू डे ला रेनेसांस फ्रांस से उठाकर एली फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 1:45 PM। और 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण, जिन्हें लोग पिपे नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी मंगलवार को सुबह 10 बजे पचित्रिया मोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे एट 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. Plug and play.
2: RM2.
3: Radio Musty.
1: Plug and play.

0: plug and play.
1: RM2 Radio Musty.
2: So well friends, it's time for your plug and play. 3:11 हो गए हैं और मैं हूँ परी आपके साथ Saturday afternoon में बनकर आई हूँ आपके musical हमसफर right here on the waves of Radio Musty. I do hope that आज आपका weekend अच्छे से बीत रहा है. बहुत से plans तो बने होंगे अपने इस weekend को खास and special बनाने, लेकिन not to forget that हमारा good music भी तो आपके साथ है. सभी के लिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं. हमारे सभी listeners जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, best mix of music aapke liye right here on Radio Musty, taking you down memory lane with this beautiful song. Hamare sabhi doston ke naam, enjoy this one.

RM2. Radio Musty feels a mess.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: सो वेल, यहाँ पर लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए. इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. मैं हूँ परी आपके साथ और हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम ऑन द सैटरडे आफ्टरनून. कहते हैं खुशियों का माहौल एंड एंजॉयिंग द सैटरडे. आप हैं माला समारोह फ्रॉम काटरबोन. आफ्टर लॉन्ग आपका मैसेज आया है. कैसी हैं आप माला जी? आई डू होप एवरीथिंग इज़ ऑलराइट ऑन योर साइड. अभी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं गाना आपके नाम, गुजार्ड फॉर ऑल समारोह फैमिली ऑफ काटरबोन. साथ ही हमारी प्यारी सी अनीता जी हमारा साथ दे रही हैं आप. सो आपके नाम भी होगा एक प्यारा सा गाना और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच. जाना जी साथ दे रही हैं आप फ्लक से और इस वक्त आप भी एंजॉय कर रहे हैं इन प्यारे गानों को. सो एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय द म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.

0: Plug and play.
1: RM2
2: Radio Musty.
3: So well, ladies and gentlemen, it's time for your plug and play. 3:40 हो रहे हैं. WhatsApp पर क्या कुछ चल रहा है आपके वहाँ. Messages, dedications तो यहाँ पहुँच रहे हैं on 5499-1294. So thank you so much, तैयब जी साथ दे रहे हैं आप प्यार भरा सलाम आपके नाम और अगला गाना होगा आपके लिए. Trishti hai from Ramastan dedicate kar rahi hai gana for sweet hubby Sachin who's working right now and sending loads of love to him. Ye hui na baat, ho gaya hai hubby ka Saturday ekdam beautiful and romantic. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं एक और हमारी प्यारी सी फ्रेंड आप है काशनी और डेडिकेट करना चाहती हैं एक प्यारा सा गाना खुद के नाम. बिल्कुल जी, नेक्स्ट ट्रैक होगा आपके लिए एंड हैव अ वंडरफुल टाइम. और आज जिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मानव, सतीश, देवेना, सभी भोला परिवार पचराफरे से उनके लिए लेकर आए हैं बहुत सारा प्यार. साथ ही यहाँ पर कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स तो परमानेंट है लेकिन लाइफ जो है वो लिमिटेड है. सो फेस एवरी प्रॉब्लम विद कॉन्फिडेंस एंड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपका नाम यहाँ नहीं आया. चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव मैसेज. यहाँ पर आपका ये जो मैसेज है आई डोंट नो कितने सारे लोगों को एक पॉजिटिव लाइट देने वाला है. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल मैसेज. गाना होगा आपके नाम और साथ ही यहाँ पर कहते हैं हेलो गुड आफ्टरनून हाउ आर यू डूइंग. मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. यलेश आप बताएं कैसे जा रहा है आपका सैटरडे. कहते हैं एक ब्यूटीफुल गाना आप जरूर डेडिकेट करें फॉर शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम. बेस्ट विशेज टू एवरी वन, हैप्पी सैटरडे एंड हैप्पी आफ्टरनून टू एवरी वन. दैट्स कमिंग फ्रॉम यलेश शाम साथ दे रहे हैं सुरिनाम से. We also have Veena Jagisa from Bellevue Mohel. कहती हैं एक beautiful गाना सभी sisters, सभी brothers के लिए. Equally goes out for MBC team. Thank you, जी, thank you so much. So ऐसे ही साथ देते रहिए दोस्तों. कुछ प्यारे गाने लेकर आए हैं आपके नाम. And this one goes out for all the fans of Shan, for all the listeners of Radio Masti. मैं हूं परी आपके साथ. It's time for your plug and play on Radio Masti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: from Radio Musti.
1: So, well, आज का दिन 9th of May अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ हमारे डियर लिसनर्स. शीतल जानकी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आज और आपके लिए स्पेशल विशेज ये है मदर इन लॉ शीला जानकी की ओर से. लवोंचर से भेजा है आपके लिए बहुत सारा प्यार. साथ ही गाना गोज आउट फॉर नीस अवनी जो आज 7 साल की हुई हैं. लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम पुपू रीना, पापा ऋषि, मम्मा पूजा, भाई अवनीश, आरव, साथ में सिस्टर सानवी, सभी बच्चे सा फैमिली ऑफ मौसलमो सुहावन कहोलीन बेल ए डिवियस लेकर आए हैं उनके लिए स्पेशल विशेज. सो लोड्स ऑफ लव टू एवरीवन जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे.

0: RM2 Radio Musty in the mix. Radio Musty in the mix.
1: अजीब इत्तेफाक है क्या मुलाकात है.
2: So well friends, with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. हमारे बाद आ रही है दिव्या लेकर कुछ प्यारे गाने आपके लिए. तब तक के लिए stay connected Radio Musty के साथ and have a wonderful weekend.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: RM2 Radio Mesti.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: North, South,
2: 103.5.
0: East, West,
2: 96.4.
0: Center,
2: 99.4.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
5: Time check, 4 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. पूजा से आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. पोर्टलुइस के बंदरगाह क्षेत्र में कल भारी तेल रिसाव हुआ. लगभग 200 से 500 लीटर ईंधन लापे नदी के पानी में प्रवाहित हुआ और बहकर बंदरगाह के जलमार्ग तक पहुंच गया. आज स्थल पर सफाई अभियान जारी रहा और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई. औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं. कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती. इसको ध्यान में रखकर मॉरिशन मरीजों के ऑपरेशन के लिए सरकार की पहल पर भारत से दो रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं. महाराणा प्रताप सिंह के जन्मोत्सव वर्षगांठ के अवसर पर बेल विलेज में आज एक पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया. कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया अवसर पर मौजूद रहे. विदेश में पश्चिम बंगाल ने आज से एक नए राजनीतिक सफर में कदम रखा है. शुभेंदु अधिकारी ने प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ली है. ये समारोह कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लगा. इस विशेष मौके के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. नमस्कार और शुभ दिन.
7: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
8: Music, Dr. Gatta.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: शाम के 4:06 हो चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल सैटरडे आफ्टरनून। वैसे काम पे आ रही थी तो मैंने देखा हल्की हल्की बारिशें हो रही है कहीं कहीं जगहों पर। सो प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके डू टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन। कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं निकल के बाहर घूमने जाते हैं और हम मौसम को देखते हैं और हमें लगता है कि धूप खिली है तो चलिए मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन मौसम है भाई, कभी भी कहीं भी पलट सकता है और बदल भी सकता है। लेकिन हम इतनी गारंटी तो ज़रूर देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। एंड यहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर शाम के 7 तक। सो यू स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती। कुछ खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम एंड ऑफ कोर्स हम लेकर आए हैं द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो चाय की चुस्कियों के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में हमारे गाने, दैट्स अ वंडरफुल एंड परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294।
0: RM2
1: Radio Musti
3: Clearance Sales! Clearance Sales!
4: Hein? Qui est arrivé là?
3: T'as pas connu? Attends-moi, tiens-toi! Spot des mille et flou! T'as fait un clearance sales dans Flacry Delphoc à partir samedi 9 mai!
4: Sérieux?
3: Oui! T'as pour gagner une grande marque chaussures originales, comme Adidas, Nike, Puma et beaucoup les autres marques! Avec un prix incroyable! À partir de 100 roupies seulement! Hommes, dames, enfants! Chacun pourrait trouver un bonheur! Chaussures pour sport, travail, même l'école! Attention! Fais comme fais save! Rendez-vous Flacry Delphoc! Pour capotier samedi 9 mai.
0: RM2
1: Radio Musti.
5: Radio Musti
1: in the mix.
5: Radio Musti feels a musti
1: in the mix.

0: காட்டு
1: RM2 Radio Masti.
2: वेल फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे. इट्स रॉकिंग यारा, कभी इश्क तो करो. प्यार तो रॉकिंग है ही, और आपकी ज़िंदगी को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप लविंग योर सेल्फ. थोड़ा और आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आप दूसरों को भी प्यार दे पाएंगे. चलिए यहाँ पर अगला गाना खासतौर से हम दरकेज करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद इस वक्त काम पर हैं. वो कॉश टू यू एंड टू ऑल दोज जो घर पर शायद किचन में है. ख़ास तौर से हमारी लेडीज़, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई बस अच्छा ही होता कि हम काम पर चले जाते, क्योंकि घर पर ये काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं. आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन काम में इतना भी उलझ नहीं जाना है कि बस आपको खुद के लिए टाइम ना मिले. आपको क्या करना है, सुबह आप उठे, जल्दी अपने काम निपटा लें और दिन भर आप आराम भी कर पाएंगे. ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. चलिए टू ऑल दोज जो इस वक्त अभी तक सोच रहे हैं कि शाम को डिनर में क्या तैयार करना है, हम आपके साथ हैं. चलिए आई जस्ट होप कि गाने सुनते सुनते आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपको डिनर के लिए क्या बनाना है. और कुछ लोग शायद तैयार हो रहे होंगे, फैमिली गैदरिंग में जाना है या फिर आप किसी स्पेशल इवेंट में इनवाइटेड हैं. तो चलिए उम्मीद करते हैं दैट इस फील को आप ज़रूर थोड़ा सा बढ़ावा देंगे हमारे गीतों के जरिए. एंड ऑफ कोर्स कुछ खूबसूरत गीतों के साथ विल कीप यू एंटरटेन्ड टिल 7 PM.
0: म्यूजिक टक टक आता
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूँ शाखा।
3: दिल जले, दिल जले, और लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: म्यूजिक टकटकाटक
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: भाई धोखा कभी रंगीन नहीं होता है, धोखा तो धोखा होता है और प्यार प्यार होता है और प्यार में धोखा बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलिए यहाँ पर उतने ही प्यार से आपके मैसेजेस हम लेकर आए हैं 1599-1294 आपके मैसेजेस जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं। चलिए यहाँ पर आप कहते हैं गुड आफ्टरनून दीदी दिव्या, हाउ यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक स्वीट बॉय यलेश शाम कनेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम सुरीनाम। अगला गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू ऑल योर फैमिली। एंड वी ऑल्सो हैव अंतिश कनेक्टेड all the way from Switzerland.

0: एंड हेलो अंतिश, कैसे हो आप? लॉन्ग टाइम। वैसे मैं देख रही हूँ आपने अपने खाने का तस्वीर भेजा है, क्या बात है। वैसे कहते हैं ना कि कुकिंग इज एन आर्ट एंड नॉट एवरीवन इज एन आर्टिस्ट, बट आई शुड से दैट यू आर अ परफेक्ट आर्टिस्ट। एंड क्या खाना बनाते हैं आप, बस इंतज़ार है कि कब हमें इसको टेस्ट करना मिलेगा, कोई वेज सा खाना। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आप भेजते हैं वो प्यार से भेजते हैं और वो हमें प्यार से मंजूर है। वेल, आज का मेन्यू है आपके यहाँ सलाद बेथाव यानी कि बीटरूट सलाद, और यू हैव कबाब आनियो यानी कि लैम्ब। तो चलिए उम्मीद करते हैं दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम ईटिंग टुगेदर विद योर फैमिली। और वैसे अंतिश कहते हैं ना कि खाना बहुत ही अच्छी तरीके से हजम होता है जब गुड म्यूजिक का साथ होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि खाना खा लेने के बाद आप थोड़ा बहुत हमारे साथ भी डांस करेंगे और कुछ ऐसे से गाने चलाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे कुछ अपने पैर और कमर को थिरकाने में। थैंक यू सो मच अंतिश साथ देने के लिए, एंड उम्मीद करते हैं कि बस आप उस पार से उतने ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। एंड द नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर योर स्वीट मामा एंड फॉर ऑल योर फैमिली। एंड साथ में यहाँ पर आप कहती हैं हेलो दिव्या, एज यूजुअल वेरी नाइस सिलेक्शन, लव योर शो, थैंक यू सो मच। विदुषी पूजा बोगन कनेक्टेड फ्रॉम गोश्तिया, हे विदुषी हाउ आर यू। एंड चलिए आप कहती हैं कि आज आपकी लवली मामा मिंता तुराचंद का बर्थडे है, तो उनको बहुत बहुत सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी, विशिंग हर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और आप उनके लिए एक बहुत ही खास मैसेज भेजना चाहेंगी, एंड वो ये है कि शी इज़ द बेस्ट मॉम एंड यू ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हैविंग सच अ सपोर्टिव मॉम, गॉड ब्लेस यू अलॉट एंड आई लव यू मामा फ्रॉम हर डियर वंस एंड होल बोगन फैमिली। थैंक यू सो मच विदुषी, एंड चलिए आपकी प्यारी मामा को हमेशा हमेशा ऐसे ही आप खुश रखना, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी मामा ऐसे ही हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, और आंटी जी आप जियो हजारों साल। We also have Kumar Devichand enjoying the show with garma garam ilaichi chai, kya baat hai. Agla gana jayega for Papa Sham Devichand of Perebea. Also we have Jyoti of Chateau Benares, next gana jayega Ashni, Rekha, Surekha and Madhab family ke liye. And chale isi ke saath hum badhenge agle gane ki or.
1: Music tak tak tak. RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: गेटिंग यू इन द सैटरडे वाइब्स, और हम तो यही चाहते हैं कि आप डांस फ्लोर को रॉक करें एंड यू बर्न द डांस फ्लोर, क्योंकि आपको बहाना मिला है थोड़ा सा डांस करने के लिए, थोड़ी सी खुशी और भी स्प्रेड करने के लिए, बिकॉज इट्स अ सैटरडे और सैटरडे में सब लोग निकल पड़ते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ साथ में फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. और आप लोग ऐसे में जो लोग घर पर हैं, आप भी टाइम निकाल कर हमें याद कर रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. एंड चलिए ही गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर नितिश जो कनेक्टेड है हमारे साथ. और नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली फॉर यू मामा मीला, और गोज आउट आल्सो फॉर परी एंड आरजे हंसनी. साथ देने के लिए थैंक यू सो मच नितिश. एंड साथ में यहाँ पर हम विश करना चाहते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू शीतल जानकी ऑफ लवाउंचू, बेस्ट विशेस फ्रॉम मॉम शीला, रवि, सुशील, विशाल, सिद्धि, स्वीटी, श्रुति, शैवी, रामकरण एंड जानकी फैमिली ऑफ लवाउंचू की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: একটা কাটা
1: RM2 রেডিও মস্তি
2: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, बिल्कुल गोलमाल नहीं है। बस यहाँ पर आपको गाने ही गाने मिलेंगे, और साथ में अगर आपको लग रहा है कि सैटरडे इवनिंग में कहाँ जाना है, बस आपको रेडियो मस्ती की लहरों पर आना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट टिल 7 PM। यस, हमारा और आपका साथ शाम के 7 बजे तक। बस कहने में ऐसा लगता है ना कि हमारे पास बहुत ही टाइम है, लेकिन आप यकीन मानिए कुछ ही देर में आई विल बी सेइंग बाय टू यू, एंड मैं आपको तब याद दिलाऊंगी कि देखा कैसे वक्त निकल जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप बस इस प्रेजेंट मोमेंट को अभी अपना बना रहे हैं, और साथ में यू मेकिंग द मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट। चलिए यहाँ पर आप कहते हैं राम राम जी, राम राम आपको भी। विशिंग माई मासी मिसेस सत्या भुजावन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश इज़ कमिंग फ्रॉम ओके टू हर फ्रॉम कमला, जो पुतोदो विलाज रहती हैं, बहन है इंदिरा, और साथ में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है बेटा विमल, की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार। श्वेता हुकुम आप है बना कई से, रोमांटिक सा गाना जाएगा फॉर हस्बैंड रोशन, आज आप सेलिब्रेट कर रही हैं 1 year wedding anniversary, your first year maybe. Hey, happy wedding anniversary to both of you, and just want to tell your husband that you love him a lot from wifey Rani. और चलिए उम्मीद करते हैं that आप हमेशा ऐसे ही साथ रहे, सुख दुख के साथ ही बन के रहे, और बस you get to celebrate many many more years of wedding anniversary together.
0: Music tak tak tak
1: RM2 Radio Musti.
3: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Beat the beat. Yeah, I'll have this. Check this out now.

0: काटो काटो
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: Well, that was a beautiful सा गाना especially आप लोगों के लिए रॉकी मूवी से लिया गया विनीत और सुनिधि चौहान की आवाजों में दिले रंगले प्यार दे नाल रंग दे that was a beautiful गाना और उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त बस हमारी गीतों को सुनने के बाद you're getting this Saturday वाली feeling वैसे weekend already आ चुका है और सब लोग सब दिनों में से ज़्यादा Friday और Saturday को पसंद करते हैं हाँ मुझे पता है Sunday जब आता है तो आप लोग थोड़े से उदास हो जाते हैं and You start getting yourself prepared for getting back to work during the weekdays. लेकिन क्या करे? Time सबके लिए ही एक जैसा होता है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है तो चलिए जिस वक्त को आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं हम यही चाहते हैं कि आप ये रियलाइज करें कि यही वक्त आप लोगों की जिंदगी है एंड स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट वट विल हैपन वट हैज हैपन्ड आप खुल के ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे ज़िंदगी सच में आपकी तरफ और 10 कदम बढ़ाएगी चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर बदवक विदेशी ऑफ मौत अबा एंड द नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली फॉर अनुषा एंड सुया बिहारी जी नेक्स्ट गाना गुजार फॉर योर लवली बेटी श्वेता दामाद रोशन हुकुम बेस्ट विशेज फॉर द ब्लिसफुल मैरिज फ्रॉम ममा सुया पापा लाल देव बिहारी ऑफ कुंगुमा और साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो शायद लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं और हमारा साथ दे रहे हैं ड्राइव सेफली एंड ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली स्पेशली आप जरूर हमें मैसेजेस भेजकर बताएं आप क्या हाँ मौसम कैसा है वी विल डेफिनेटली लाइक टू नो ऑन 5499-1294
0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Well, we have some more tips आप लोगों के लिए हर सैटरडे की तरह एक बार फिर से हम लेकर आए हैं फैशन टिप्स आप लोगों के लिए। लास्ट सैटरडे वी स्पोक अबाउट मेसी बन या फिर बन जो आप फिट कर सकते हैं राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, और आज हम बात करेंगे वेवी हेयर स्टाइल के बारे में जो आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। तो कभी भी आप कोई भी आउटफिट पहने ना किसी भी इवेंट के लिए, द मोस्ट ब्यूटिफुल हेयर स्टाइल कैन बी अ वेवी हेयर। याद रखिए कर्ली कर्ल्स बनाना और वेवी हेयर में बहुत ही फ़र्क है। वेवी हेयर आप कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने बालों को कर्ल करना है। कर्ल कर लेने के बाद जो आपके कर्ल्स है ना उसको आपको तोड़ना है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, एक कुंभ की हेल्प से। और आप देखेंगे कि ये जब आप कर्ल को तोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो ये वेवी बन जाता है, और वेवी बालों पर आपको स्प्रे डालना है टू कीप द हेयर स्टाइल इंटैक्ट। और आप इसको चाहे साड़ी में, लहंगा में, कुर्ती में, या फिर आप किसी इवेंट के लिए पार्टी करने जा रहे हैं, यू हैव अ गाउन ऑन यू, तो आप ये हेयर स्टाइल कभी भी किसी भी आउटफिट पे ट्राई कर सकते हैं।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाटक RM2 रेडियो मस्ती।

वेल फ्रेंड्स, ऑलरेडी 5:51 हो चुके हैं. यस, कुछ ही देर में विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द समाचार बुलेटिन, और इसके बाद एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात इन द नेक्स्ट आवर.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के 6 बज चुके, पेश है समाचार बुलेटिन।

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। पोर्ट लुइस बंदरगाह क्षेत्र में कल दोपहर भारी तेल रिसाव हुआ। लगभग 200 से 500 लीटर ईंधन लापे नदी के पानी में प्रवाहित हुआ और बहकर बंदरगाह के जलमार्ग तक पहुंच गया। आज स्थल पर सफाई अभियान जारी रहा और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। देश में पेनाल्टी पॉइंट से सिस्टम लागू होने के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में 25% की कमी दर्ज की गई। ये प्रवृत्ति बरकरार रखने के मकसद से सरकार कानूनी ढांचों को और मजबूत करने की योजना बना रही है। इसी दिशा में इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नए नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यूरोप डे के संदर्भ में राजदूत उस्का बेनेडिक्ट के आमंत्रण पर कल देश के कई राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव तेल्फिया में एक समारोह के लिए एकत्र हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम को मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के शुरुआती दिनों की याद दिलाने वाली 56 साल पुरानी एक प्रतीकात्मक तस्वीर भेंट की गई। पोर्ट लुइस बंदरगाह क्षेत्र में कल भारी तेल रिसाव हुआ। लगभग 200 से 500 लीटर ईंधन लापे नदी के पानी में प्रवाहित हुआ और बहकर बंदरगाह के जलमार्ग तक पहुंच गया। आज स्थल पर सफाई अभियान जारी रहा और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। देश में पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में 25% की कमी दर्ज की गई है। ये प्रवृत्ति बरकरार रखने और हादसों की संख्या और घटाने के मकसद से सरकार कानूनी ढांचों को और मजबूत करने की योजना बना रही है। इस दिशा में इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नए नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ये जानकारी आज मेबग में लगी एक विशेष बैठक के दौरान सामने आई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत के संदर्भ में परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों और सड़क इस्तेमाल करने वालों के बीच ये बैठक लगाई गई। इस साल सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए विषय चुना गया है सेफ वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल हेल्दी सिटीज। कुणाल गोजी, रजनीकर।
1: मेबा के केंद्र में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक साइकिल है। लोग रामदत्त कुछ समय से परंपरागत साइकिल बदल कर इलेक्ट्रिक साइकिल चला रही है। उन्होंने कहा, बचपन से 64 वर्ष की आयु तक बाइसिकल ही चला रहे हैं। काम पर जाने के लिए अभी एक इलेक्ट्रिक साइकिल लिया है। बाजार, दुकान आदि जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, उन्हें वापस घर लाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल परिवहन समस्या से बचने का एक समाधान है। फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने या फिर सामान ले जाने से खतरा पैदा हो सकता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर सड़क का इस्तेमाल करने वालों ने बताया कि उन्हें इलेक्ट्रिक साइकिल से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक साइकिल के प्रयोग की दिशा में बेहतर रूप से सहायता पहुंचाने के वास्ते कानून लागू किए जाएंगे। ये उम्र की सीमा, अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने या फिर दोनों पहियों की बीमा से संबंधित है। परिवहन मंत्री उस्मान माहमूद ने कहा, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नियम लागू नहीं, मंत्रालय के स्तर पर NLTA के स्तर पर निर्देश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में काम चल रहा है। उम्र, हेलमेट पहनने, बीमा, उन सभी पर ध्यान दे रही है। संबंधित कदम उठाए जाएंगे ताकि एक ऐसे क्षेत्र में जहां नियम लागू नहीं है फिर से इन्हें लागू किया जा सके। ये बात उल्लेखनीय है कि रात के दौरान सफर करने के लिए सभी साइक्लिस्ट और साथ में सवारी के लिए भी फ्लोरोसेंट जैकेट पहनना अनिवार्य है।
0: सड़क पर आपकी सुरक्षा एक छोटी सी चूक से खतरे में पड़ सकती है, और कई बार ये चूक होती है आपकी गाड़ी के पहियों की हालत को नज़रअंदाज करना। असल में घिसे हुए टायर कम पकड़, लंबी ब्रेकिंग दूरी और एक पल में हादसे का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। विशेषज्ञ आगाह करते हैं, पहियों की नियमित जांच सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि सड़क पर सुरक्षित रहने का आधार है। अदिति अवतार को सुनते हैं।
2: घिसे हुए पहिए न केवल सड़क पर वाहन की पकड़ कम कर सकते हैं बल्कि ब्रेकिंग दूरी को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए पहियों का बारीकी से निरीक्षण करना आवश्यक होता है।
3: T'as un témoin du jeu, mais le gars trouvé, il finit tous témoin du jeu, il finit tous limites. C'est même qu'il nous dit la limite là, ça. Il finit tous limites, alors, même dans le jeu, je cave, machine qui a saillé de gros la pli, de l'eau, et freinage, j'ai un bon freinage, ça. Ça, c'est un lago neuf. Alors, il n'y a aucun danger, mais je trouvais, c'est un gros la pli, de l'eau qui a traversé.

0: C'est ici, je vais en Teto, et je garde une bonne adhérence, un bon grip, un bon freinage.
1: पहिए खरीदते समय कुछ तकनीकी कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है।
0: La roue neuf, le connaît qui est à 8 mm la gomme, 8 mm téton. Quand la roue finie, soit elle est presque finie, il y en a 1,6 mm. Bon, si nous guettons la roue là, moi je vous trouve là, il m'a 4224. Qui était ça? Ça la roue là, une fabriquée en l'année 2024, 42e semaine. Alors, ça la roue là, je vais rouler juste pendant 5 ans. Ici là, il y a 100 dy, un indice de vitesse ça. Alors, le car roule 10, 300 km/h à la roue. Indice de charge, indice de vitesse, c'est y, 300 km/h.
1: पुलिस की तरफ से चालकों को याद दिलाया जाता है कि घिसे हुए टायर के साथ वाहन चलाना कानूनन एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना लग सकता है, जैसा कि सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदन बताते हैं।
2: जब एगो काउचू नहीं अच्छा रहेला तो ला पुलिस जब तोहर आगे कलक और चिके कलक तो सकेला तोहरा एगो फिक्स पेनाल्टी में रही जो उनके ओकर जुर्माना 5,000 है। 5,000 के जुर्माना फिक्स पेनाल्टी पड़े और पेनाल्टी पॉइंट पड़े भी तोरा 2 to 4 points ओकर रेंज में सकेला तोरा मिले आको तोहर काउचू नहीं अच्छा रहल।
1: जुर्माने के अलावा पहियों को लेकर लापरवाही के दुर्घटना की स्थिति में गंभीर यहाँ तक की दुखद परिणाम हो सकते हैं।
2: हर गाड़ी चालक के ओकर दिव्य है कि अपन लाहू अपन काउत्सू चहला चेके करे के से पहला ओकर प्रेशियो देखा लाहू के प्रेशियो चला रिस्पेक्टे करे के जे ढेर ढेर प्रेशियो रही तो ओकर ग्रिप नहीं अच्छा रही। अब जे कमतियों रही तो देखबा कि लाहुआ कंट्रोल नहीं रही जब ओके कोंजिया करत हुआ एगो काउत्सू के ओकर लाज है यानी कि जब ओकर लाज दे पास हो जला तो नहीं सब हवे काउत्सू से अभी करे दिखबा नहीं तो हवे एकलाते होता या फिर ओकर में कोनो प्रॉब्लम हो जाए। एगो काउत्सू के चहला हमेशा काउत्सू और लाहू नीमन से कनेक्टे रह के हाउ गाड़ी में ओकर जो हाउ जेकू है सब हमेशा चहला चेके करते रह के जमे गाड़ी चलाओ तो हाउ लाहू नहीं निकल जाए। और कात्रियम जो सब आदमी करे लन सर देखे लन सर से ओकर लाहू लिस्ट बोली ना सर।
1: चालकों को गाड़ियों के अच्छे रखरखाव की आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते पुलिस और संबद्ध अधिकारियों की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
3: सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता दोहरा रही है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल वुमेन्स काउंसिल द्वारा रेजी में आयोजित एक समारोह में उपस्थित डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नावामारी ने फंड्स के संचालन में पारदर्शिता के महत्व और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इस समारोह के अंतर्गत महिला संगठनों और इलाकाई समितियों को अनुदान दिए गए, साथ ही शी क्रिएट्स प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। माधवी जगन्नाथ, रजनी बिकर।
4: रेजुई में आयोजित इस समारोह के दौरान उन महिलाओं को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने नेशनल वुमेन्स काउंसिल की ओर से प्रस्तुत शी क्रिएट्स प्रतियोगिता में बेहतर इनकाम किया। इस पहल का मकसद सिलाई और दस्तकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की रचनाओं को पेश करना। शी क्रिएट्स की विजेता तस्वर सिंह बसान ने कहा, एक दिलचस्प प्रतियोगिता है जिसकी बदौलत हम अपनी क्षमता के बारे में जान सके, पेश कर सके। ड्रापिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अफ्रीकन ड्रेस, ये सब करने का मौका मिला। नेशनल वुमेन्स काउंसिल की अध्यक्षा आनु मुरेश प्रसाद लौफे ने कहा, शी क्रिएट्स प्रतियोगिता इस साल शुरू की गई क्योंकि दस्तकारिता के क्षेत्र में काफ़ी मांगे हैं और काफ़ी योग्य महिलाएं भी हैं जिनकी बहुत सुंदर रचनाएं हैं। वे इसे प्रस्तुत करना चाहती हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। इस समारोह के अंतर्गत देश की 9 इलाकाई समितियों तथा 400 से अधिक महिला संगठनों का समर्थन करने के लिए वार्षिक ग्रांट भी दिए गए। जानिन ओगियो ने कहा, बच्चों, घर पर रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अपने भाषण में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं जेंडर इक्वालिटी मंत्री आर्या नावामारी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के हक में सरकारी कटिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, परंपरागत कोर्स हैं, इन्हें आधुनिक बनाना चाहिए, इनमें सुधार लानी चाहिए और सोशल सेंटरों में नए कोर्स भी लाने चाहिए। महिला संगठनों पर विश्वास है, वे जानते हैं कि कैसे इस पैसे को खर्च करना चाहिए, अब से ज्यादा सोच समझकर ऐसा करना चाहिए। विगत में शायद कुछ अनियमितताएं थी, इसीलिए समय समय पर हमें याद दिलाना चाहिए कि ये पब्लिक फंड है जिसका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक फंड से पैसे महिलाओं को दिए जा रहे हैं, महिला संगठनों के पैसे नहीं हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को शी क्रिएट्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं की रचनात्मक कला को देखने का भी अवसर मिला। शी क्रिएट्स जो महिला ठेकेदारी को प्रोत्साहित करता है और साथ में उन्हें अपनी कला दर्शाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
3: खबरों को हम जारी रखते हैं। यूरोप डे के संदर्भ में राजदूत उसका बेनेडिक के आमंत्रण पर कल देश के कई राजनीतिक और कूटनीतिक महानुभाव तेलफिया में एक समारोह के लिए एकत्र हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को मॉरिशस और ब्रसेल्स के बीच सहयोग के शुरुआती दिनों की याद दिलाने वाली 56 साल पुरानी एक प्रतीकात्मक तस्वीर भेंट की गई। पॉल बेरांजे ने आज अपने नए राजनीतिक दल फ्रंट मिलिटें प्रोग्रेसिव का की लॉन्चिंग की। वाक्वा नगर पालिका में आयोजित कांग्रेस के दौरान एमएमएम के पूर्व नेता ने पार्टी की विचारधारा की मुख्य रूपरेखा और आने वाले महीनों के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इसको ध्यान में रखकर मॉरिशन मरीजों के ऑपरेशन के लिए सरकार की पहल पर भारत से 2 रोबोटिक्स सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं। गीता सुनारायण का विवरण पेश है।
5: 40 साल से कम आयु का ये मरीज पंक्रियास के कैंसर से पीड़ित हैं। इस बीमारी का पता केवल एक महीना पहले चला था। आज वो कई घंटों तक चली बेहद जटिल सर्जरी के बाद आईसीयू में हैं। डॉक्टर सरावना राजामणिकम कहते हैं, पिछले दिनों के दौरान हमने देखा कि छोटा देश होने के बावजूद कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा है। फेफड़े और पैंक्रियास के कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हमने देखा कि इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। सिगरेट जलाना एक मुख्य कारण है, लेकिन खान पान की बदलती आदतें और पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग भी कुछ कारण है। ये जटिल ऑपरेशन डॉक्टर दीप्ति मिश्रा की सहायता से किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अन्य सर्जरी भी निर्धारित हैं, जिससे भारतीय और मॉरिशस के सर्जन्स के बीच विशेषज्ञता का आदान प्रदान संभव होगा। डॉक्टर दीप्ति मिश्रा कहती हैं, हमने फेफड़े के कैंसर से पीड़ित मरीजों पर पैरास्कोपी से ऑपरेशन किया है। इस सहयोग से हम सब और बहुत कुछ सीख रहे हैं। मॉरिशन डॉक्टरों के साथ हम अपनी विशेषज्ञता बांट रहे हैं। दोनों विशेषज्ञ मॉरिशस सरकार से अनुरोध पर मॉरिशस आए हैं। वे लगभग 10 मरीजों का ऑपरेशन करेंगे, जिनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजना पड़ता। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं, एक ऑपरेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लग रहे हैं बिना ब्रेक लिए, और हमसे एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं। हम उनका हवाई टिकट चुकाते हैं, उनका अच्छा स्वागत करते हैं। वे मॉरिशस आना पसंद करते हैं, मदद करना पसंद करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उनके साथ साथ उनके ग्रुप के अन्य विशेषज्ञों को भी हमारी मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पिछले सोमवार को मॉरिशस पहुंचे ये डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी के भी विशेषज्ञ हैं।
3: भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गहलोत राजपूत महासभा की पहल पर बेल विलेज स्थित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाए गए। गीता सुनारायण।
5: महाराणा प्रताप सिंह जयंती वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा और राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया। उनका जीवन साहस, त्याग, स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग उनके शौर्य और बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की भावना जगाती है। आज उनकी 486वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा द्वारा बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। समारोह में सभा के संचालकों के साथ साथ कई अन्य महानुभाव भी उपस्थित थे। सभा के अध्यक्ष कहते हैं,
6: आज इस जगह में हम लोग उसके याद में जो महान आत्मा है, जो जिन्होंने देशभक्ति के लिए त्याग किया है, संघर्ष किया है, उसके याद में हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं।
5: महाराणा प्रताप की कुर्बानी और वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए। उनकी जयंती केवल उनके जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें देशभक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा की सीख भी देती है।
3: बात करते हैं रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी की धारणा पर। मॉरिशस में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स अपनी 20 सालों से ज़्यादा के अनुभव के साथ इलाकाई क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित कर रही है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष के उद्देश्य वाली हिंद महासागरीय आयोग के एक्सप्लोर नामक परियोजना के संदर्भ में एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत सैंपिया स्थित इस कंपनी का दौरा भी किया गया। क्रिस्टल लिभास, गीता सुनारायण।
5: पिछले 20 वर्षों से मॉरिशस की कंपनी डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स कचरे को प्लास्टिक ग्रैनुल्स में बदल रही है। इसी सामग्री का उपयोग कंपनी बाद में पॉलीएथिलीन पाइप और इलेक्ट्रिक कंडक्ट बनाने में करती हैं, जो निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स के को डायरेक्टर एविन कोहे कहते हैं, हमारे ज्यादातर उत्पादक प्लास्टिक कचरे से बनाए जाते हैं, जो कंपनियों से एकत्र किए जाते हैं, यहाँ इन्हें छांटा जाता है। ये स्थानीय विशेषज्ञता एक्सप्लोर एक्सपेडिशन प्लास्टिक कार्यक्रम का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही है। यहाँ 5 वर्षीय परियोजना फ्रांसीसी विकास एजेंसी और फ्रांसीसी वैश्विक पर्यावरण फंड द्वारा फाइनेंस की गई है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इस परियोजना के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रतिभागियों को प्लास्टिक रिसाइकलिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझाने के लिए इस कंपनी का दौरा आयोजित किया। एक्सप्लोर सीओई प्रोजेक्ट के फ्लोरियन मोशाडू कहते हैं, मॉरिशस में 10 परियोजना धारकों को चुना गया है जो अपनी योग्यता बढ़ाएंगे। ज्यादातर प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर आधारित हैं। हम स्थल का दौरा कर रहे
7: हैं।
5: उपस्थित प्रतिभागियों में इलाके के कई परियोजना धारक शामिल हैं, जो सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ी पहल विकसित करना चाहते हैं। इकोबाला रोड्रिक्स की मारी पल पियलवी कहती हैं, हमने रिसाइकलिंग कारखाने का दौरा किया। हमारा संदेश ये है कि हम नहीं चाहते कि रोड्रिक्स ऐसी स्थिति में आए कि इतनी भारी मात्रा में प्लास्टिक रिसाइकल करना पड़े। हमारा उद्देश्य है सचेत कराना, जागरूक कराना। ये मॉरिशस की विशेषज्ञता दिखाती है कि आज टिकाऊ विकास, नवाचार और रिसाइकलिंग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। डीकेडी प्लास्टिक पाइप्स के को डायरेक्टर शिवानी गोपाल कहते हैं, न सिर्फ मॉरिशस बल्कि पूरा हिंद महासागर हमारी ओर आ रहा है हमारा ज्ञान पाने के लिए। इस परियोजना के तहत चुने गए प्रस्तावों की घोषणा साल के अंत तक की जाएगी।
3: 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में लगने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर एक नज़र पर बात करते हैं। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 40 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें मॉरिशस से एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा। नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। विदेश में भारत में पश्चिम बंगाल की जनता ने अपने और राज्य के लिए बदलाव का फैसला किया है। टीएमसी के 15 साल का शासन खत्म करते हुए वहां की जनता ने बीजेपी के प्रति विश्वास जताया। इस भारी जीत के बाद आज सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ली। अदिति अवतार।
8: पश्चिम बंगाल ने आज से एक नए राजनीतिक सफर में कदम रखा है। सुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के लिए प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ली। ये भव्य समारोह कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लगा। इस विशेष मौके के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। सुवेंदु अधिकारी के साथ साथ 5 अन्य सांसदों ने नए मंत्रिमंडल के सदस्य की हैसियत से शपथ ली। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों तक टीएमसी का शासन रहा है। बीजेपी पर विश्वास जताने के लिए मोदी जी ने वहां की जनता का आभार प्रकट करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जनता के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपने राज्य और भविष्य के लिए एक साहसी फैसला लेने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता की प्रशंसा की। इस ऐतिहासिक दिन के संदर्भ में श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत इस दिन की दुगुनी खुशी मना रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन ही आयोजित किया गया है। उन्होंने गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी सीख ने समय से परे जाकर भारतीय जनता को सत्मार्ग पर प्रोत्साहित किया है और भारत के विकास के सफर को स्वर्णिम बनाया है।
3: और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो रविवार 10 मई को सुबह 4 बजे तक लागू है। इस प्रकार हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को बादल घिरे रहेंगे, हल्की वर्षा होगी ऊंचाइयों पर। कल मौसम अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, आली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:29 पर होगा।

0: 6:28 मिनट हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक लुडोविक को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

Copain l'inter rouge mais छियासठ साल के 66 years old श्री राज मातु जिन्हें लोग राज नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी सोमवार 11 मई को सुबह 9 बजे इनकी पत्नी सीता पूर्णिमा मातू के मकान को पहले इंतियाज से उठाकर बुआ मौसम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 9 AM।

रॉयरो त्याहूज में, रॉयरो त्याहूज में 73 साल के 73 इयर्स ओल्ड श्री रामेश्वर गिरधारी, श्री रामेश्वर गिरधारी जिन्हें लोग रमेश बाजौ नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे, कल

0: एवेन्यू पैंचू स्टैनली रॉजहिल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री धर्मजय भवानी दीन, श्री धर्मजय भवानी दीन जिन्हें लोग किशन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है कल दिन के एक बजे इनके मकान एवेन्यू पैंचू स्टैनली रॉजहिल से उठाकर कोदेगांव दक्षिण श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 9 रू डे ला रेनेसांस, नंबर 59 120 फ्रांस में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी, श्रीमती चित्रलेखा लेखा गिरधारी जिन्हें लोग अनीता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी सोमवार को दिन के 2:15 बजे इनके मकान नंबर 9 रू डे ला रेनेसांस नंबर 59 120 फ्रांस से उठाकर एली फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। आपको बता दें कि वे पहले मॉरिशस में लिबेटो वाक्वा की रहने वाली थी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 1:45 PM। मोहा पेचित रिविया में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जिन्हें लोग पेपे नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है मंगलवार को सुबह 10 बजे मोहा पेचित रिविया से उठाकर त्यामिनी स्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे एट 10 AM। और जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मुंगुट्रोई की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में इनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर दुफ्रिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Music, Dr. Gutter.
2: RM2, Radio Musti.

0: वेल फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ. ऑफ कोर्स एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. और वैसे पता चला है कि बाहर बहुत बहुत ही ठंड है, स्पेशली मोका में तो इट्स रियली चिल्ड आउटसाइड. और 6 बजे तो इतना अंधेरा छा गया है कि क्या कहे. कुछ लोग जॉगिंग करने जाते हैं, लेकिन आजकल आप लोग इस प्लान को कैंसिल कर रहे हैं बस क्योंकि विंटर सीजन आ चुका है. लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग सच में अपने आप को फिट रखना चाहते हैं दे विल फाइंड अवे, और जो लोग नहीं रखना चाहते हैं खुद को फिट दे विल फाइंड एक्सक्यूजेस. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस विंटर सीजन में आप खुद को सुरक्षित रखेंगे. एंड स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज प्लीज टाइम टू टाइम आप पानी बॉयल करते रहना और उनको पिलाते रहना और खुद भी पीना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जितना हो सके आप कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना. चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.
1: Music, tak tak tak.
2: RM2, Radio Musti.

0: वेल थोड़ी देर में आपको बाय भी कहने का टाइम आ जाएगा, लेकिन चलते चलते ऑफ कोर्स कुछ आपके मैसेजेस। जिलाश आप है वाकवा से, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर हस्बैंड नितेश। आपकी 10वीं शादी की सालगिरह है, वाओ, तो बस आपको बहुत सारा प्यार टू यू एंड टू योर हस्बैंड नितेश, एंड जस्ट होप कि ऐसे ही हर साल आप साथ में अपनी एनिवर्सरी मनाएंगी बहुत ही प्यार से। अनुष आप हैं सीजीएम मिल फॉर एस साइड से, नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर हस्बैंड विमल। बेटी परी आपके फ्रेंड्स हैं पूनम, और साथ में ओके आपकी फ्रेंड है पूनम, चाचा अनिल, हसराज बॉस ऋषि वर्किंग एट सुपरमार्केट राइट नाउ, एंड हेमलता भजन आप है पॉइंट ऑफ पीमा से, नेक्स्ट गाना जाएगा टू ऑल योर नियर एंड डियर वंस जो इस वक्त RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए साथ में मीला भजन आप है वाकवा से, एंड बिल्कुल बहुत ही अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया आप लोगों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप भी बस उस पार से बहुत ही प्यार से हर एक गीत को सुन रही हैं। एंड चलिए अगला गाना गुजार स्पेशली आपके नाम भी मीला जी, एंड इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी बात संजय ऑल सेट हैं आपको एंटरटेन करने के लिए इन द नेक्स्ट शो, जहां पर कुछ खूबसूरत गीतों के साथ यू विल बी हैविंग द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। तब तक के लिए आप लोग दिव्या को दीजिए इजाजत। यस, मंडे को हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है रात्रि के 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट ग्रेट सैटरडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।
1: म्यूजिक टक टक आता
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: of the year 2026.
1: Jhankar Beats.
2: RM2 Radio Musti.
1: Jhankar Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
3: सात बजकर 3 मिनट यू लिसनिंग टू झंगार बीट संजय के साथ. वेरी क्विकली लेट्स टेक यू टू इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पर अर्ली किक ऑफ में आज लिवरपूल ने चेल्सी के साथ मैच ड्रॉ किया 1-1. हालांकि 76वें मिनट पर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑन द 6 मिनट रियान गावेनबर्ग ने लिवरपूल के लिए खाता खोला ऑन द 6 मिनट, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. हाँ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. ऑन द कंट्री, चेल्सी के एनजो फर्नांडिस ने इक्वलाइज किया ऑन द 35th मिनट, और अंत तक सिर्फ येलो कार्ड एक दूजे को हर एक टीम को दिए गए. 4 येलो कार्ड्स फॉर चेल्सी, 2 येलो कार्ड्स फॉर लिवरपूल, लेकिन गोल और नहीं बना. सो 1 पॉइंट फॉर ईच. लिवरपूल इस ड्रॉ के बाद चौथे पोजीशन पर है. 36 matches played, 17 wins, 59 points. और पीछे में एस्टन विला, 35 matches played, 58 points. So हो सकता है कि ये पांचवा स्थान भी हाथ से जाएगा.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2 Radio Musti.
3: So, आपको बता दिया है अर्ली किक ऑफ में आज लिवरपूल ने मैच ड्रॉ किया एक एक चेल्सी के साथ, जो मैचेस शुरू हो चुके हैं एंड आर इन सेकंड हाफ. उन मैचेस में से ब्राइटन 2 वुल्व्स नील 58 मिनट्स प्लेड, फुलहाम नील बोर्नमुथ नील. इन दोनों टीमों के में एक एक व्यक्ति को रेड कार्ड्स मिले हैं. सैंडरलैंड नील मैनचेस्टर यूनाइटेड नील 57 मिनट्स प्लेड. और आज का लेट मैच होगा बिटवीन मैन सिटी एंड ब्रेंटफोर्ड.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhangar Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: जबकि आज का लेट मैच मैनचेस्टर सिटी खेलने वाला है, आर्सेनल अपना मैच कल खेलने वाला है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द फिक्स्चर्स फॉर टुमारो. क्रिस्टल पैलेस, जब क्रिस्टल पैलेस ने कॉन्फ्रेंस लीग में अपना स्थान बुक कर लिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीक, सो इन द फ्री कॉन्टिनेंटल कप्स एक में है आर्सेनल, दैट विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पेरिस सेंट-जर्मेन. In the Europa League, we've got Aston Villa in the final, and in the Conference League, we'll be having Crystal Palace for the first time. Ye trio, which can bring the free cups to England. Energy, as they say. So Crystal Palace will be playing tomorrow against Everton. Nottingham Forest, Tucker Lega, Newcastle, say. Burnley versus Aston Villa, or Kalka late match hoga between West Ham and Arsenal. अगर आर्सेनल अपने तीन आखिरी मैचेस जीत लेता है, देन द टाइटल वुड बी गोइंग टुवर्ड्स द गनर्स.

एक मैच समाप्त हो चुका है। एल्चे और अलावेस ने मैच ड्रॉ किया 1-1। सेवी और इस्पानियल हाफ टाइम तक पहुंचे हैं, द स्कोर स्टिल नील नील। आज के दो मैचेस जो और निर्धारित हैं, एटलेटिको मैड्रिड खेलेगा अगेंस्ट सेल्टा विगो, और आज का आखिरी मैच होगा बिटवीन रियल सोसाइडाड एंड बिचिस। स्पेन की ला लिगा में पहले स्थान पर बार्सिलोना 34 मैचेस प्लेड 86 पॉइंट्स, दूसरे स्थान पर रियल मैड्रिड 34 मैचेस प्लेड 77 पॉइंट्स, और तीसरे स्थान पर विलारियल 34 मैचेस प्लेड 68 पॉइंट्स।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: And time to take you into the Bundesliga. जहां पर बायर्न म्यूनिख 32 मैचेस के बाद चैंपियन घोषित हो चुका है। आज निर्धारित 5 मैचेस में से 4 समाप्त हो चुके हैं। ऑक्सबू 3, बोरुसिया मोंचेनग्लादबाख 1, ऑफेनहाइम 1, वर्डर ब्रेमन 0, आरबी लाइप्ज़िग 2, सेंट पाउली 1, स्टुटगार्ट 3, बायर 1, और आज का लेट मैच होगा बिटवीन वुल्फ्सबर्ग एंड बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख जिसने अपने दूसरे लेग चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के दूसरे लेग में मैच ड्रॉ किया ड्यूरिंग द वीक 1-1 अगेंस्ट पेरिस सेंट जर्मेन, और इस ड्रॉ मैच के बाद चैंपियंस लीग से बाहर हो गया। सो विंसेंट कंपनी की टीम इट्स अटैक प्रोन टीम इस साल चैंपियंस लीग को नहीं जीत पाएगा। सो इट विल बी पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस आर्सेनल इन द फाइनल। सो बायर्न 32 मैचेस प्लेड 83 पॉइंट्स, बोरुसिया डॉर्टमुंड 33 मैचेस प्लेड 70 पॉइंट्स, और आरबी लाइप्ज़िग 33 मैचेस प्लेड 65 पॉइंट्स। स्टुटगार्ट चौथे पोजीशन पर है 33 मैचेस प्लेड 61 पॉइंट्स।

भी हाथ धोकर परे हुए हैं जस्ट टू सिक्योर अ सिक्स प्लेस सिनोनिमस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द फुटबॉल चैंपियंस लीग. लेकिन इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ आर्सेनल एंड एस्टन विला आर गोइंग टू नेगोशिएट देयर फाइनल फिक्स्चर्स ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: It's 8 p.m.
7: Débat climat fait commencer. Banzines qui représente 16 collèges à travers Maurice fin paré pour faire tendre la voie au changement climatique et son impact. Qui a une vision pour l'avenir? Débat climat est l'initiative groupe MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration de Dr. François Gémen, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 9 mai à partir de 8h30 à soir pour premier épisode de MBCN et MBCSAT.
8: Student of the Year 2026 Hindi Quiz Competition. Dekhna na bhule quarterfinal number 2 is Sunday Quiz Ravivar MBC3 6:30 PM. कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन MBC3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
0: झलकार बीट्स
5: RM2 रेडियो मस्ती
0: झलकार बीट्स

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: जबकि कॉन्टिनेंटल यूरोप में लगभग सभी मेजर जो चैंपियनशिप्स हैं उनके नतीजे सामने आ चुके हैं।

We know most of the major champions in the major countries like France, Germany and Spain. England mein abhi tak suspense jari hai. So today Man City will be playing against Brentford. जो अन्य मैचेस हैं वो समाप्त हो चुके हैं. ब्राइटन ने वोल्व्स को 3-0 से हराया. बोर्नमुथ ने जाकर फुलहम को उसके मैदान पर 1-0 के स्कोर पर हराया. और सनरलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच ड्रॉ किया 0-0. सो थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे इटली के सीरी आ में, जहां पर एक मैच समाप्त हो चुका है और दूसरा अभी जारी है. कैग्लियारी 0 उजिनेस 2 लाजो 0 इंटर मिलान 1. इटली के बारे में थोड़ी देर में और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: Football ko chhod kar, let's talk about tennis. The ATP International BNL of Italy, jahan par, yani ki Rome, Italy mein ye tournament khela ja raha hai aur जिन मैचेस जो आज खेले जा रहे हैं, चागो ओगुस्तिन चिरंते फ्रॉम अर्जेंटीना, जिसने ग्रेट ब्रिटेन के कैमरॉन नूरी को हराया 6-3, 7-5. अन्य मैच रशिया के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया के मोमिया कैच मानोविच को हराया 6-4, 6-4. स्पेन के पाब्लो लामास रुइज ने फ्रांस के कोरेंटिन मुते को हराया 6-4, 3-6, 7-6. स्पेन के मार्टिन लाडुलुस ने क्रोएशिया के मारिन सिक्लिक को हराया 6-4, 6-4. So these were the main matches concerning

रोम में खेले जाने वाले एटीपी टूर्नामेंट में। याद रहे कि इसी टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच की हार हुई है अपने ओपनिंग गेम में 6-2, 6-2, 2-6 and 4-6। जोकोविच जो घायल होने के कारण ठीक तरह से खेल नहीं पाया एंड हैज लॉस्ट इन हिज ओपनिंग मैच इन दिस टूर्नामेंट। That was ATP International BNL Italia played at Rome.

0: सैया तेरा ट्विटर पे
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हिट म्यूजिक ओनली
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती.

जैसे हमने आपको पहले बताया था इनी जी इन द होल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फुटबॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री थ्री टीम्स आर प्लेइंग एज फाइनलिस्ट इन द थ्री डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल थ्री आर इन पोजिशन टू विन लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक बात भी वो ये है दैट इन द कॉन्फ्रेंस लीग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री द सीगल्स अर्थात क्रिस्टल पैलेस आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट रायो वालेकानो फॉर द फाइनल ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग और ये होने वाला है 27 मई को रात के 11 बजे Crystal Palace, which is presently on the 15th position in the English Premier League, 34 matches played, 43 points. उसने अपने दो last matches हारे हैं. So let's hope that Crystal Palace manages to clinch this first European trophy in its history. याद रहे दैट विल बी ऑन द 27th ऑफ मई रात के 11 बजे अगेंस्ट रायो वालेकानो

0: beats.
1: RM2 Radio Musti
0: Jhankar Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junkar Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: जंकर बीच यहाँ पर समाप्त होने को चला और आपने बहुत ही प्यार से हमारा साथ निभाया. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्त हो वर्किंग विशिंग यू और बो कुराज. I'll catch you once again tomorrow afternoon as from 4 PM. Take good care of yourselves and of your dear ones. मिलते हैं फिर से. Have a great weekend. Bye bye. Love you all.

0: वेलकम टू RM2। आता है मुझको
1: प्यार में जल जाना। इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
2: चेक दिस आउट।
1: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
3: Nimura, nimura, nimura.
2: Check this out.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: أولادي رسول الله
1: RM2

सांबड़ी सांबड़ी हित समते हूँ ना कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला कला

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.